0: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। पूरे देश से चुने गए ये नए उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के सचिव अजय सहगल को फर्जी सहमति पत्र जमा करके धोखाधड़ी से भूमि उपयोग परिवर्तन प्राप्त करने से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। ये जांच पंजाब पुलिस ने किसानों की शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज की थी। विभाग की जांच में पता चला कि आरोपियों ने 15 भूस्वामियों की 30.5 एकड़ भूमि के संबंध में फर्जी सहमति पत्र तैयार किए थे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रूपये तक की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रूपये हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Mako. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations. The Rozgar Mela was held at 47 locations across the country.

0: आंगन। घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ मंजुला
1: और मैं हूँ प्रतिभा। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर।
1: और देखो
0: और बिल्कुल बिल्कुल बोलो
1: देखो मंजुला, देखो घर आंगन कार्यक्रम है जहां पर बात होगी परिवार की, सेहत की, करियर की भी, और इतिहास की, गहराइयों की, संस्कृति की, और बहुत कुछ होगा आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि जिंदगी के छोटे बड़े पहलुओं की हम यहां बात करते हैं, है ना।
0: बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ। खुद की पहचान बनाने वाली महिलाएं ही दुनिया बदलती हैं। अपने सपनों को पंख दो, आसमान खुद रास्ता दे देगा। जब एक स्त्री अपनी पहचान खुद बनाती है तो वो सिर्फ जिंदगी नहीं बदलती, पूरे परिवार, समाज, आने वाली पीढ़ियों की सोच बदल देती है।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तो इसी सोच के साथ शुरू करते हैं आज का सफर। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम घर आंगन।

0: समोसे की आवाज में अभी आपने ये सुना फिल्म थी नीला आकाश।
1: और अब बात करते हैं कि ऐसी महिला की जिन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक नया रास्ता बनाया। ये कहानी है भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी की। आज के समय में डॉक्टर बनना एक करियर विकल्प है, लेकिन जरा सोचिए 18th सेंचुरी में जब लड़कियों की पढ़ाई तक पर सवाल उठते थे तब क्या होता था।
0: बिल्कुल, तब एक लड़की को डॉक्टर बनने का फैसला कितना बड़ा कदम रहा होगा ना मंजुला। आनंदी बाई का जन्म 1865 में हुआ। कम उम्र में शादी हुई, जो उस समय आम बात थी। उनकी जिंदगी का एक मुश्किल मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने नवजात बेटे को खो दिया।
1: और अपनी संतान को खो देने के बाद उन्होंने ये प्रण लिया कि वो एक दिन डॉक्टर बनेंगी और ऐसी असमय मौत को रोकने का प्रयास करेंगी। उनके पति गोपाल राव ने भी उन्हें भरपूर सहयोग दिया और हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया।
0: बिल्कुल, और देखो, एक भारतीय महिला उस दौर में विदेश जाकर मेडिकल पढ़ाई करने का निर्णय लेती है। न भाषा आसान, न हालात, लेकिन इरादा एकदम साफ था। वो अमेरिका गई, पढ़ाई की और 1886 में मेडिकल डिग्री हासिल की। आनंदीबाई जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर बन गई और उन्होंने इतिहास रचा।
1: ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, ये उस सोच की जीत थी जो समाज से आगे चलने की हिम्मत रखती है। उनकी जिंदगी बहुत लंबी नहीं रही, सिर्फ 21 साल की उम्र में ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उससे पहले वो एक ऐसा रास्ता बना चुकी थी जिस पर आज लाखों महिलाएं आत्मविश्वास से चल रही हैं।
0: और कभी कभी देखो, बदलाव के लिए लंबी उम्र नहीं बल्कि बड़ा इरादा चाहिए होता है। आज जब हम अस्पताल में जाते हैं, महिला डॉक्टर से मिलते हैं, या किसी लड़की को बड़े सपने देखते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उस रास्ते की शुरुआत आनंदीबाई जैसी महिलाओं ने ही की थी।
1: और सपना छोटा हो या बड़ा मायने नहीं रखता, हौसला उसे सच बना दे बस इतना ही काफी होता है। कुछ लोग उम्र से नहीं अपने काम से जीते हैं और वही दुनिया में असली निशान छोड़ जाते हैं।

0: सरगम और कुमार शानू की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी जुर्म।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
2: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
1: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
2: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 तक सिर्फ FM गोल्ड पर।
3: और दोस्तों, वक्त बदलता है, तकनीक बदलती है, लेकिन कुछ आवाजें समय से परे होती हैं। हम उसी आवाज का जश्न मना रहे हैं, आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों का। आकाशवाणी सिर्फ एक प्रसारण सेवा नहीं है, बल्कि भारत की धड़कन रही है। वो दौर जब एक रेडियो के आसपास पूरा परिवार जुटता था और हर कार्यक्रम एक साझा अनुभव बन जाता था।
0: और फिर आया डिजिटल युग और लगा कि शायद रेडियो पीछे छूट जाएगा, लेकिन आकाशवाणी ने खुद को बदला और भी करीब आ गई। आज आकाशवाणी सिर्फ AM तक सीमित नहीं, बल्कि FM की दुनिया में भी इसकी मजबूत पहचान है। 1993 में आकाशवाणी ने एक नई पहल की, निजी कंपनियों को FM पर एयर टाइम देना शुरू किया।
3: दिल्ली और मुंबई से शुरू हुई ये पहल जल्द ही बड़े शहरों तक पहुंची और इसके साथ ही कंटेंट भी बदला। म्यूजिक, चैट शो और शहरी अंदाज के प्रोग्राम जो है वो लोकप्रिय हुए। आज यही FM हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, गाड़ी में, फोन में, हर जगह।
0: और अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, मोबाइल एप्स और लाइव चैनल लिंक के जरिए आप दुनिया के किसी भी कोने में आकाशवाणी को सुन सकते हैं। पॉडकास्ट ने भी सुनने का तरीका बदल दिया है, जहां समय की कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ आपकी पसंद मायने रखती है।
3: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा, तेजी से बदलती दुनिया में भी आकाशवाणी वही सुकून देती है, जहां आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। 90 साल का ये सफर सिर्फ तकनीक का नहीं, बल्कि भरोसे और जुड़ाव का है। तो सुनते रहिए, क्योंकि माध्यम बदलता है, लेकिन सच्ची आवाज हमेशा साथ रहती है।

0: करते हैं स्वयं सहायता समूह की मंजिला, है ना, यानी कि SHGC, वो आज महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा रहा है, या यूं कहें कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं के विकास की सीढ़ी है।
1: बिल्कुल सही कहा, ये 10 से 20 लोगों यानी मुख्य रूप से महिलाओं का समूह होता है जो समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने और मजबूत करने के उद्देश्य से एक साथ मिलकर काम करते हैं।
0: बिल्कुल, तो जानते हैं कि SHG कैसे काम करता है। समूह के सभी सदस्य हर महीने एक छोटी राशि एक साझा फंड में जमा करते हैं। जब किसी सदस्य को पैसे की जरूरत होती है तो समूह जमा राशि में से स्वयं सहायता समूह की मंजिला, है ना, यानी कि SHGC, वो आज महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा रहा है, या यूं कहें कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं के विकास की सीढ़ी है।
1: बिल्कुल सही कहा, ये 10 से 20 लोगों यानी मुख्य रूप से महिलाओं का समूह होता है जो समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने और मजबूत करने के उद्देश्य से एक साथ मिलकर काम करते हैं।
0: बिल्कुल, तो जानते हैं कि SHGकैसे काम करता है। समूह के सभी सदस्य हर महीने एक छोटी राशि एक साझा फंड में जमा करते हैं। जब किसी सदस्य को पैसे की जरूरत होती है तो समूह जमा राशि में से कम ब्याज पर उसे लोन देता है।
1: और SHGका उद्देश्य लोगों विशेषकर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। ग्रामीण और शहरी जरूरतमंद को भारी कर से बचाना, महिलाओं को सशक्त बनाना, उनमें नेतृत्व क्षमता के विकास करना, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और इस स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य है।
0: बिल्कुल, और देखो भारत सरकार और राज्य सरकार महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाती हैं और सबसे प्रमुख जो है वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है।
1: बिल्कुल, और इसके तहत समूह को शुरुआती आर्थिक सहायता दी जाती है। अधिक जानकारी और अपने नजदीकी समूह से जुड़ने के लिए आजीविका मिशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं।

बड़ा जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: हैं स्वयं सहायता समूह की महिला, है ना, यानी कि SHGC, वो आज महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा रहा है, या यूं कहें कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं के विकास की सीढ़ी है।
1: बिल्कुल सही कहा, ये 10 से 20 लोगों यानी मुख्य रूप से महिलाओं का समूह होता है जो समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने और मजबूत करने के उद्देश्य से एक साथ मिलकर काम करते हैं।
0: बिल्कुल, तो जानते हैं कि SHG कैसे काम करता है। समूह के सभी सदस्य हर महीने एक छोटी राशि एक साझा फंड में जमा करते हैं। जब किसी सदस्य को पैसे की जरूरत होती है तो समूह जमा राशि में

0: की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: और प्रतिभा, गर्मी की जो छुट्टियां होती हैं वो सिर्फ घूमने का बहाना नहीं बल्कि खुद को फिर से खोजने का मौका होती हैं। और अगर आप भीड़ से हटकर कुछ अलग कुछ खास ढूंढ रहे हैं, शिमला, मनाली, मसूरी, ये सब बहुत हुआ, तो आज की ये यात्रा आपके लिए है। आज हम ले चलेंगे आपको उन जगहों पर जो सिर्फ देखी नहीं जाती है, महसूस की जाती है।
2: बिल्कुल। और देखो, सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को ले चलते हैं चोपता, है ना। यहाँ हर सुबह एक नई शुरुआत लगती है। यहाँ की असली खूबसूरती सिर्फ उसके नजारों में नहीं, उसके सन्नाटे में है,
1: शांति में।
2: यहाँ का तुंगनाथ मंदिर, जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, और वहां तक का जो ट्रैक है, हर कदम पर बदलते नजारे आपको देखने को मिलेंगे। और जब आप चंद्रशिला शिखर पर सूर्योदय देखते हैं तो वो पल कैमरे में नहीं बल्कि दिल में कैद होते हैं।
1: क्या बात है, तुम तो कविता पढ़ दिया तुमने। और शानगढ़, जहाँ वक्त धीमा हो जाता है, शानगढ़ की पहचान है उसका विशाल घास का मैदान, इतना खुला कि लगता है जैसे आसमान जमीन को छू रहा हो। यहाँ एक शांगचूल महादेव मंदिर है, जहाँ के आसपास का इलाका बेहद पवित्र माना जाता है, जहाँ आज भी कोई पक्का निर्माण नहीं होता है।
2: और देखो, तवांग भी किसी लिहाज से कम नहीं है। यहाँ हर मोड़ पर एक कहानी तवांग को सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि और गहरा ही बनाती है। और यहाँ का जो तवांग मठ है वो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। यहाँ शांति सिर्फ महसूस नहीं सुनाई भी देती है। रास्ते में सेला पास, बर्फ से ढकी ऊंचाई और सेला झील जो बादलों के बीच तैरती सी लगती है, और फिर बुमला पास जहाँ भारत चीन सीमा है, और तवांग आपको ये नजारे ही नहीं देता बल्कि सुकून भी देता है।
1: बिल्कुल सही। और हाफलोंग बादलों का घर है, हाफलोंग की सबसे खास जगह है हाफलोंग झील। सुबह की धुंध में ढकी हुई जैसे कोई पेंटिंग हो यहाँ के पहाड़ियों पर ट्रैकिंग और बर्ड वॉचिंग, जहाँ हर मोड़ पर कुछ नया दिखता है। और अगर आप किस्मत वाले हुए तो बादल इतने करीब

0: ही आपको छू कर निकल जाएंगे। हाफलॉन्ग शोर से दूर नहीं बल्कि शांति के और करीब आपको ले जाता है।
1: और कनाताल की बात करें तो साथ ही में छुपी खूबसूरती कनाताल का जो है वो सबसे बड़ा आकर्षण है उसका यहाँ पर अनछुआपन। यहाँ एक सुरकंडा देवी मंदिर ट्रैक है, छोटा लेकिन ऊपर से दिखने वाला 360 डिग्री व्यू, बस ये सब देखने के लायक। कनाताल इको पार्क यहाँ देवदार के पेड़ों के बीच चलना अपने आप में एक थेरेपी जैसा है। और रात में कैंपिंग के दौरान तारों से भरा आसमान जो शहरों से अब बिल्कुल नहीं दिखाई देता।
0: तो दोस्तों इस बार सिर्फ जगह मत बदलिए, अपना नजरिया बदलिए, भीड़ से दूर जाइए उन रास्तों पर जहाँ कम लोग जाते हैं, क्योंकि अक्सर वही रास्ते आपको खुद से मिलाते हैं।

0: अभी हम सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार को फिल्म सीता और गीता से।
1: और मंजुला देखो, आज जब हम किसी भी क्षेत्र में नजर दौड़ाते हैं तो हम महिलाओं की

0: जानकारी हर जगह पाते हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब हुई हैं। शिक्षा, तकनीकी, विज्ञान, रक्षा से लेकर मनोरंजन, हर क्षेत्र में महिलाओं ने सफलता पाई है।
1: बिल्कुल सही कहा। रूढ़िवादी सोच को पीछे छोड़ते हुए आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं। तो टूर गाइड इसको भी अपने प्रोफेशन के रूप में अपनाया जा सकता है। टूर गाइड के रूप में महिलाओं की भूमिका बड़ी है, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त, स्वतंत्र तो बना ही रहा है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस और सांस्कृतिक जो परीक्षा होता है उसमें भी महिलाओं को मजबूत बना रहा है।
0: बिल्कुल। और देखो, साथ ही पर्यटकों के साथ बातचीत करके विदेशी भाषा सीखने और विभिन्न संस्कृतियों को समझने का सुनहरा अवसर भी मिलता है। महिला पर्यटक विशेष रूप से महिला गाइड को ही प्राथमिकता देती हैं, और कुछ भी काम देखो आसान नहीं होता, अपने साथ चुनौतियां भी लाता है।
1: इस काम में भी चुनौतियां हैं और सुरक्षा भाव बना रहता है, साथ ही लंबे टूर पर जाने या कई दिनों तक घर से बाहर रखने के कारण परिवार और बच्चों की देखभाल में संतुलन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
0: बिल्कुल। और देखो, अगर हमारे जो श्रोता हैं उनमें कोई महिलाएं हैं, अगर वो टूर गाइड बनना चाहती हैं तो कम से कम इसके लिए जो योग्यता है वो ये है कि 12वीं पास होना जरूरी है। यदि आप पर्यटन या इतिहास में डिग्री या डिप्लोमा करते हैं तो ये भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। और आप किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट इन टूरिस्ट गाइड या डिप्लोमा इन ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट भी कर सकती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। तो आप ट्रेवल कंपनियों के साथ जुड़कर काम कर सकती हैं या फिर एयरबीएनबी एक्सपीरियंस जैसे एप्स और वेबसाइट के माध्यम से अपना खुद का टूर भी डिजाइन और बेच सकती हैं। तो आप भी अपने सपने को पूरा कीजिए और इस डिफरेंट तरीके के करियर को जरूर अपनाएं।

0: चुका है और धूप, पसीना और धूल, ये तीनों मिलकर हमारे बालों की हालत खराब कर देते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा समर हेयर केयर रूटीन जो आसान भी है और असरदार भी। तो सबसे पहली और जरूरी बात, साफ सफाई। गर्मियों में सिर की त्वचा जल्दी तैलीय हो जाती है, इसलिए हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार हल्के शैम्पू से बाल धोना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, तेल लगाना ना भूलें। नारियल या बादाम का हल्का सा तेल हफ्ते में 1 से 2 बार 20 से 30 मिनट के लिए।
1: और अब बात करते हैं गाजरदार घरेलू हेयर मास्क के। मुल्तानी मिट्टी, दही, एलोवेरा जेल और करी पत्ता के पाउडर को मिलाकर एक पेस्ट बनाइए। इसे बालों की जड़ों से लेकर पूरे बालों में लगाइए और 20 से 25 मिनट के बाद इसे धो लीजिए।
0: ये आपके सिर को ठंडक भी देगा, अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करता है और बालों को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बनाता है।
1: और एक और जरूरी बात ये कि गर्मियों में कंडीशनर का इस्तेमाल करने से बचें। इसके बजाय बाल धोने के बाद हल्का सा हेयर सीरम लगाएं जो टॉक्सिन फ्री हो। इससे आपके जो बाल हैं वो मुलायम रहेंगे, सुलझे हुए रहेंगे और बिना चिपचिपाहट के रहेंगे।
0: और हाँ, शरीर को भीतर से ठंडा और तरोताजा रखना भी उतना ही जरूरी है। भरपूर पानी पिए और फलों को अपने भोजन में शामिल करें। बाहर निकलते समय बालों को धूप से बचाने के लिए दुपट्टा या टोपी पहने या फिर स्कार्फ लगाएं। तो दोस्तों, इस गर्मी अपने बालों को थोड़ा अतिरिक्त ध्यान दीजिए,
1: क्योंकि जो हमारे अगर जो बाल हैं वो स्वस्थ रहेंगे तो हमें असली खूबसूरती भी देंगे। लहराते बालों में छुपा है, क्योंकि ये चुराज और सादगी में भी झलकता है इनका अंदाज़।

0: बात ऑनलाइन होने वाली धोखाधड़ी के मामलों से जुड़ी थी। आज डिजिटल अरेस्ट जैसे शब्द सुनने में आम लगते हैं। डिजिटल अरेस्ट एक फ्रॉड का तरीका है जिसमें अपराधी पुलिस, सीबीआई, ईडी या कस्टम अधिकारी बनकर वीडियो कॉल के जरिए व्यक्ति को डराते हैं कि वो गिरफ्तार हो चुका है। वे पीड़ित को घर में ही डिजिटल रूप से कैद कर लेते हैं और छोड़ने के बदले पैसे मांगते हैं।
1: बिल्कुल, और देखो जबकि कानून में ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं है, डिजिटल अरेस्ट करने के लिए जालसाज तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जैसे कि आपके नाम का कोई कुरियर पकड़ा गया जिसमें गैर कानूनी सामान है, या आपके आधार से धोखाधड़ी करना और ये कहना कि आपका बैंक खाता या आधार कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ है।
0: बिल्कुल सही, तो वीडियो कॉल पर फर्जी वर्दी पहनकर गिरफ्तारी का वारंट दिखाना, पीड़ित को वीडियो कॉल पर बने रहने के मजबूर करना और घर से न निकलने की धमकी देना। ऐसे में घबराएं नहीं, पुलिस कभी वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करती। तुरंत कॉल को काट दें और पुलिस की साइबर अपराध हेल्पलाइन को रिपोर्ट करें।
1: श्रोताओं, जानकारी के अभाव में आज बहुत से लोग इस तरह के स्कैम का शिकार हुए हैं और हो भी रहे हैं, तो ऐसी किसी भी तरह की परिस्थिति में संयम बनाकर रखें और अपने घर के लोगों से बात जरूर करें।

0: और आज के इस सुहाने सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक नया दिन, नई ऊर्जा, नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। दीजिए मंजुला और
1: प्रतिभा को इजाजत।
0: नमस्कार।

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन घर आंगन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी

की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: situation being witnessed at certain retail outlets is highly localized and temporary in nature. In IPL cricket, Lucknow's Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow this evening at 7:30 p.m. Last night, Sunrisers Hyderabad defeated Royal Challengers Bengaluru by 55 runs in Hyderabad. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त सुनिधि गुप्ता. तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की उस पारिवारिक और भावनात्मक फिल्म की जिसने रिश्तों, त्याग और परिवार की एक नींव को और एकता को बड़े ही संवेदनशील अंदाज में पर्दे पर उतारा. जी हां, आज की हमारी फिल्म है खानदान. साल 1965 में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन ए भीम सिंह ने किया. फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे सुनील दत्त, नूतन, प्राण और ओम प्रकाश, और संगीत दिया था महान संगीतकार रवि ने. तो आइए डूब जाते हैं इस सदाबहार फिल्म की कहानी, संगीत और उससे जुड़े दिलचस्प किस्सों में.

वाह क्या बात है, फिल्म का सबसे लोकप्रिय और अमर गीत तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, जिसे अपनी मधुर आवाज दी थी लता मंगेशकर जी ने, और इस गीत के लिए इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। श्रोताओं, खानदान उस दौर की फिल्म थी जब परिवार और रिश्तों की भावनाएं फिल्मों का केंद्र हुआ करती थी। फिल्म की कहानी दो भाइयों के पारिवारिक और परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है, जहां गलतफहमियां और लालच परिवार को बांट देते हैं, लेकिन लास्ट में प्रेम और अपनापन सबको फिर एक कर देता है। फिल्म में सुनील दत्त ने गोविंद का किरदार निभाया था, जिसका एक हाथ दुर्घटना में प्रभावित हो जाता है, और उनके अभिनय को इतना ज्यादा सराहा गया कि उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। तो आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए एक ही फिल्म से कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं फिल्म खानदान की, और इससे जुड़े गानों से भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, सुनवाते रहेंगे इसके सुप्रसिद्ध गाने, और इसी बात पर हम आपको सुनवाते हैं इसका, इस फिल्म से जुड़ा एक और गीत।

श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म खानदान दरअसल निर्देशक ए भीम सिंह की तमिल फिल्म भागा पेरिवनई का हिंदी रूपांतरण थी। और एक और दिलचस्प बात यह है कि फिल्म का संगीत इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ कि संगीतकार रवि को फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार मिला। वहीं गीतकार राजेंद्र कृष्ण को तुम ही मेरे मंदिर के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का सम्मान भी मिला। श्रोताओं, 60 के दशक का संगीत आज भी दिलों में बसता है क्योंकि उसमें सादगी भी थी और आत्मा भी। फिल्म खानदान में रिश्तों की जटिलताओं को बहुत ही सहज तरीके से दिखाया गया। संयुक्त परिवार, संपत्ति का बंटवारा, भाईचारे की परीक्षा, ये सभी विषय आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। फिल्म में खलनायक की भूमिका में प्राण ने अपने शानदार अभिनय से सभी का दिल जीत लिया और उस दौर में प्राण साहब का नाम ही दर्शकों में रोमांच भर देता था। तो बात हम करते रहेंगे फिल्म खानदान की, तो चलिए सुन लेते हैं इस फिल्म से जुड़ा एक और गीत।

दोस्तों, ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। तो आज हम बात कर रहे हैं फिल्म खानदान की। तो साल 1965 हिंदी सिनेमा के लिए बेहद सुनहरा साल माना जाता है। उसी वर्ष वक्त, गाइड और जब जब फूल खिले जैसी बड़ी बड़ी फिल्में भी आईं, लेकिन खानदान ने अपनी भावनात्मक कहानी और संगीत के दम पर अलग पहचान बनाई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही और उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। तो चलिए अब सुनते हैं एक ऐसा चुलबुला गाना और मेले की रंगत से भरा हुआ गीत, ओ बल्लो सोच के मेले में जाना, इसी फिल्म से जुड़ा हुआ।

दोस्तों हम बात कर रहे हैं 1964 में रिलीज हुई फिल्म खानदान की। तो उस दौर में फिल्मों की शूटिंग की तकनीक जो होती थी वो इतनी आधुनिक नहीं थी आज की जितनी, फिर भी कलाकारों का अभिनय इतना ज्यादा प्रभावशाली होता था कि दर्शक कहानी से पूरी तरह जुड़ जाते थे। सुनील दत्त अपने गंभीर और संवेदनशील अभिनय के लिए जाने जाते थे और नूतन की सादगी भरी अदाकारी दर्शकों के दिलों को छू जाती थी। इन दोनों की जोड़ी को इस फिल्म में बहुत ज्यादा सराहा गया, बहुत पसंद किया गया। दोस्तों खानदान सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि भारतीय पारिवारिक मूल्यों का एक आईना है। इस फिल्म ने यह संदेश दिया कि चाहे कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाएं, परिवार का प्रेम अंततः सबको जोड़ ही देता है। और यही वजह है कि 6 दशक बाद भी ये फिल्म सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जिंदा है। तो आइए अब सुन लेते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में भक्ति रस से भरा ये गीत।

श्रोताओं, सच ही कहा गया है कि पुरानी फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती थी, महसूस की जाती थी। खानदान भी एक ऐसी ही फिल्म है जो हमारे परिवार, हमारे रिश्तों और हमारी भावनाओं को जोड़ती है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जब रिश्तों के लिए हमारे पास समय नहीं हो रहा, समय कम पड़ता जा रहा है, तब ऐसी फिल्में हमें ठहर कर अपने और अपनों के बारे में सोचने का पूरा मौका देती हैं।

0: सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। अब से कुछ ही देर में आप अगला कार्यक्रम सुनेंगे, समाचार सुनेंगे, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत अपनी दोस्त को सुनिधि को। नमस्कार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं संजू शर्मा। पहला बुलेटिन दीआं खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज वख वख सरकारी विभागां ते संगठनां विच नवनियुक्त नौजवानां नूं 51,000 तों वध नियुक्ति पत्र तकसीम कीते। पंजाब च रोजगार मेले दौरान रेल कोच फैक्टरी कपूरथला च केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अते पटियाला लोकोमोटिव वर्कर्स च मुख प्रशासकीय अधिकारी ने नवनियुक्त नौजवानां नूं नियुक्ति पत्र वंडे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर बाद नवी दिल्ली पहुंचे। श्री रूबियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल करेंगे मुलाकात। जलंधर स्थित एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वालों इंडियन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के सकत्र अजय सहगल मनी लॉन्ड्रिंग मामले च गिरफ्तार। मोहाली की विशेष अदालत ने उसनों 27 मई तक ईडी रिमांड से भेजा। आईपीएल क्रिकेट में अज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला लखनऊ च शामी 7:30 बजे पंजाब किंग्स नाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज वख वख सरकारी विभागां दे संगठनां च नवनियुक्त नौजवानां नूं 51,000 तों वध नियुक्ति पत्र वंडे। रोजगार मेला देश भर विच 47 थावां ते आयोजित कीता गया। देश भर तों चुने गए नवे भर्ती होए उम्मीदवार रेलवे, गृह मंत्रालय, सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ते उच्च सिक्ख्या विभागां समेत वख वख मंत्रालयां अते विभागां विच शामिल होणगे। रोजगार मेले नूं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने लई उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि देश दुनिया के वक्खो वक्ख मुल्कां नाल भी भाईवाली कर रहा है, जिसका उद्देश देश के नौजवानों नूं मौके रुजगार ते आलमी मौके प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेयोग सप्लाई चेन भाईवाल बन रहा है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है।

0: की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय नागरिक साल 2047 तक भारत में विकसित भारत बनाने लिए वचनबद्धता नाल काम कर रहा है। देश में प्राप्त करने वास्ते देश कई क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा,
0: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: इधर पंजाब चुन्नीवा रोजगार मेला आज रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्कर्स पटियाला समेत दो थावां ते करवाया गया, जिथे 281 नवनियुक्त लाभार्थियों नियुक्ति पत्र वंडे गए। आरसीएफ कपूरथला विखे केंद्रीय पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रोग्राम की प्रधानगी करदिआं आख्या,
2: रोजगार मेला देश भर में पावरफुल नेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया है, जो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, मेरिट बेस्ड और टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट के लिए। आज देश भर में 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर हैव बीन हैंडेड ओवर बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ये ईच अपॉइंटमेंट लेटर एक तरफ सरकारी या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, एक तरफ से ये नेशन बिल्डिंग के लिए प्लेज भी है फॉर द शेयर्ड ड्रीम ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया।
1: बाद में उन्होंने 93 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र तकसीम किए। इस मौके नियुक्ति पत्र हासिल करने वाले नौजवानों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया।
3: मेरा नाम अजय कुमार है, मैं राजस्थान के जिला बीकानेर का रहने वाला हूं और मेरा चयन SBI जूनियर एसोसिएट के पद पर हुआ है। केंद्र सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं।
4: मैं आकाश वर्मा जोधपुर राजस्थान से हूं, मुझे रेलवे में ऑफिस एग्जीक्यूटिव के पद पर नियुक्ति मिली है।
5: मेरा नाम ज्योति है, मैं हनुमानगढ़ राजस्थान की रहने वाली हूं। मैं SBI जूनियर एसोसिएट पद पर चयनित की गई हूं। मैं केंद्रीय सरकार को तहे दिल से इसके लिए धन्यवाद करती हूं।
6: माय नेम इज तजिंदर सिंह कंडा एंड आई एम फ्रॉम बठिंडा पंजाब and I'm selected for junior associate in State Bank of India. I'm so grateful for the central government to give me the opportunity to serve the nation.
1: ਉਧਰ ਪਟਿਆਲਾ ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 188 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ,
7: आज यहां पर 19वीं रोजगार मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें ऑल इंडिया स्तर पे लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, जिसमें से PLW में 188 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। 188 नियुक्तियों में से करीब 65 पंजाब से हैं, 128 इंडियन रेलवे में हैं और इंडियन रेलवे के 128 में से करीब 11 हैं वो पंजाब से संबंधित हैं।
1: इस दौरान नवनियुक्त उम्मीदवारों ने कहा,
8: मेरा नाम विजय दुबे है, मैं उत्तर प्रदेश अयोध्या से बिलोंग करता हूं और मैंने यह परीक्षा 2024 में इस परीक्षा का फॉर्म भरा था। मुझे प्रोडक्शन यूनिट में एज अ जेई मैकेनिकल जॉब मैंने पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं।
9: मैं बेसिकली लुधियाने से हूं।
10: मेरा नाम शानी चतुर्वेदी है, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूं। 2026 में मेरा सिलेक्शन एज ए डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के तौर पे हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने इस एग्जाम को काफी अच्छे से कराया, इसमें किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई है और जो इस पद के हकदार थे उन्हें मतलब ये पद मिला है।
1: अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर बाद नवी दिल्ली पहुंच गए ने। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ विखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात करेंगे। श्री रूबियो कल विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर नाल भी दवल्ली मीटिंग करेंगे। सोमवार को श्री रूबियो आगरा से जयपुर जाएंगे। इस तो बाद मंगलवार को नवी दिल्ली क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग शामिल होंगे। ये खबरें तुम आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर और यूट्यूब से साडा चैनल है @AIR जलंधर। जलंधर स्थित एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने इंडियन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के सकत्र अजय सहगल को फर्जी सहमति पत्र जमा करवा के धोखाधड़ी नाल जमीन की वरतों च तब्दीली प्राप्त करने संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले च गिरफ्तार किया है। यह जांच पंजाब पुलिस वालों किसानों दी शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज किए जाने बाद की गई थी। विभाग की जांच में पता लगे कि मुलजमान ने 15 जमीन मालकों की 30 एकड़ तो वध जमीन के संबंध च फर्जी सहमति पत्र तैयार किए सन। इन्होंने फर्जी सहमति पत्रों के आधार से मुलजम इकाई ज व्यक्तियों

0: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: जनाब मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के अज्म के लिए हर भारतीय काम कर रहा है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के नौजवानों के लिए मुलाजमत के नए मौके पैदा किए जा रहे हैं।
0: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री आरसीएस कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला में 19वां रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। इस मेले में 281 नए मुस्तफिदीन को तकरूर इनामे तकसीम किए गए। आरसीएस कपूरथला में पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप पुरी ने प्रोग्राम की सदारत करते हुए बताया कि रोजगार मेला एक ताकतवर कौमी सरमाया बन गया है, जो बर वक्त और शफाफ मुलाजमत को यकीनी बनाता है।
2: ये हमारा देश भर में रोजगार मेला ये एक पावरफुल नेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया है, जो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, मेरिट बेस्ड और टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट के लिए। मोर देन 5 लाख यंग इंडियंस हैव ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्री 4.0, जॉब रोल्स एज डेटा इंजीनियर, मशीन लर्नर, लर्निंग इंजीनियर, क्लाउड स्पेशलिस्ट एंड सोल्यूशन आर्किटेक्ट। India is preparing our young people to provide leadership in that area.
1: बाद में उन्होंने 93 नए मुलाजमत हासिल करने वालों को तकरीरनामे सौंपे। पटियाला में मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमत हासिल करने वाले 188 नए उम्मीदवारों को तकरीरनामे सौंपे गए। पेट्रोलियम कुदरती गैस और सयाहत के मरकजी वजीर ममलिकत सुरेश गोपी ने तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का इफ्तिताह किया। 19वें कौमी रोजगार मेले के हिस्से के तौर पर इसका एहतमाम किया गया था। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू करदा रोजगार मेला भर्ती मुहिम से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है और इसका मकसद युवा शक्ति को राष्ट्रीय शक्ति का रूप देना है। उन्होंने कहा कि तकर्रुरनामे एक मुकद्दस फरीजे का आगाज है। जनाब गोपी ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपनी तवानाई कौमी तामीर में इस्तेमाल करें और विकसित भारत के नस्बुलैन को पूरा करें। पार्लियामानी उमूर और इत्तलात और नशरियात के वजीर ममलिकत एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार ने 2047 तक विकसित भारत को अमली जामा पहनाने का तहैया कर रखा है। उन्होंने ये बात चेन्नई में आईसीएफ रोजगार मेले से खिताब करते हुए कही। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मुल्क डिजिटाइजेशन, रोजगार के मौके, बुनियादी ढांचे और कारोबार को आसान बनाने के मामलात में तेजी से तरक्की कर रहा है। डॉक्टर मुरुगन ने बताया कि वजीर आजम की यकीन दहानी के मुताबिक अब तक मरकज ने 12 लाख रोजगार मुहैया कराए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि अगले 5 वर्षों के दौरान 1 लाख असातिज़ा को मुलाजमत दी जाएगी। तालीमी महकमे की एक आला सतह की जायजा मीटिंग के दौरान वजीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हर साल कम से कम 25,000 असातिज़ा को मुलाजमत दी जाए। उन्होंने कहा कि असातिज़ा की तकर्रुरी से मुतालिक नोटिस हर साल जुलाई के महीने में जारी किया जाएगा। उधर वजीर तालीम मिथिलेश तिवारी ने बताया कि वजीर आला के ऐलान के बाद असातिज़ा की तकर्रुरी के इम्तहान TRE-4 के चौथे दौर से मुतालिक खदशात अब खत्म हो गए हैं। उन्होंने इत्तला दी कि महकमे तालीम जल्द ही खाली असामियों का जायजा लेकर मुलाजमत के लिए ताज़ा दरख्वास्त देगा। बिहार हुकूमत ने आज 21 जून को होने वाले नीट यूजी के फिर से इम्तहान में शिरकत करने वाले सभी तलबा के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफर का ऐलान किया है।

0: मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: Mr. Modi highlighted that the world is eager to be a part of India's growth journey. The Prime Minister said that the country is also partnering with various countries of the world aimed at providing opportunities, employment and global exposure to the youth of the nation.
0: Duniya भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: Mr. Modi added that every Indian is working with a commitment to making India Viksit Bharat by 2047, and to achieve this, the country is investing in several sectors. The Prime Minister highlighted that new employment opportunities are being created for the youth of the country.
0: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: The Prime Minister encouraged the new appointees to make the most of the IGOT Karma Yogi platform, noting that it would help them grasp their responsibilities with ease. Mr. Modi expressed confidence that these new appointees would contribute to the nation's progress and that their work and decisions would play a key role in realizing the vision of Viksit Bharat. In Rajasthan, employment fairs were organized in Jaipur, Jodhpur, Ajmer and Bikaner, where appointment letters were distributed to more than 1,100 youths. Railway Minister Ashwini Vaishnaw attended the state-level Rozgar Mela held in Jaipur. Addressing the gathering, Mr. Vaishnaw said that recruitment for more than 1,60,000 posts in the railways is currently underway, with over 4 crore candidates participating in the process. He said that earlier, recruitment procedures used to take several years to complete, causing delays for job aspirants. However, with the introduction of the annual recruitment calendar system, efforts are now being made to complete the process within a fixed time frame.
2: Railway mein aaj kareeb 1 lakh
3: work is currently underway for approximately 1,60,000 recruitment. You must be aware that previously recruitment used to come out once every 8 to 10 years or once every 4 to 5 years. That was the era of the Congress during the time of the UPA. When Modi ji took responsibility, he compressed that time, and after that, some time ago, an annual calendar system was introduced and a clearly defined timetable was made.
2: Annual calendar ki vyavastha.
1: In Punjab, the 19th Rozgar Mela was organized at two places, including Rail Coach Factory RCF Kapurthala and Patiala Locomotive Works Patiala today, where appointment letters to 281 new beneficiaries were distributed. At RCF Kapurthala, Union Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Puri, while presiding over the program, said that the Rozgar Mela has become a powerful national institution which ensures transparency and merit-based time-bound recruitment.
4: ये हमारा देश भर में रोजगार मेला ये एक पावरफुल नेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया है, जो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, मेरिट बेस्ड और टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट के लिए। मोर देन 5 लाख यंग इंडियंस हैव ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्री 4.0, जॉब रोल्स एज डेटा इंजीनियर, मशीन लर्नर, लर्निंग इंजीनियर, क्लाउड स्पेशलिस्ट एंड सोल्यूशन आर्किटेक्ट। India is preparing our young people to provide leadership in that area.
1: Union Minister of State for Parliamentary Affairs and Information and Broadcasting L. Murugan has said that the government is committed to realizing the vision of Viksit Bharat by 2047.

0: and attend the U.S. Embassy's Independence Day celebrations in the national capital. The World Health Organization, WHO, has raised the public health risk of the Bundibugyo strain of Ebola in the Democratic Republic of the Congo from high to very high at the national level. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus said the risk is now assessed as very high nationally, high regionally, and low globally. He added that 82 cases and 7 deaths have been confirmed, but the outbreak is likely much larger, with nearly 750 suspected cases and 177 suspected deaths reported so far. The WHO had earlier declared the outbreak a public health emergency of international concern, while clarifying that it is not at the pandemic level. Indian Oil has reassured customers and the general public that there is no overall shortage of petrol and diesel in the country. In a statement, the oil marketing company said that the current situation being witnessed at certain retail outlets is highly localized and temporary in nature, arising due to local demand-supply imbalances and redistribution of sales patterns in select areas. Indraprastha Gas Limited, IGL, increased the price of compressed natural gas, CNG, by 1 rupee today. After the price hike, the new rate for 1 kilogram CNG in the national capital is 81 rupees and 9 paise. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow this evening. The match will start at 7:30 p.m. Last night, Sunrisers Hyderabad defeated Royal Challengers Bengaluru by 55 runs in Hyderabad. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red warning for heatwave to severe heatwave conditions over East Uttar Pradesh, East Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. According to the IMD, heatwave conditions are expected to persist over large parts of northwest, central and eastern India over the next 6 to 7 days. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments, says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1 lakh teachers in the state over the next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned copies, photocopies of answer books for class 12 board examinations until tomorrow. U.S. Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है।

0: इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे. साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है.
0: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है. ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है.
1: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया.
0: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी. मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं. आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है. यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए. विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं.
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए. संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है. चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है. कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है. नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉ सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है. उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया.
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं. आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा.
1: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया. केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया. सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है. पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया. यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी. बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं.

0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा 30वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमरीकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेन्यू कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ

0: दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंदीबुगियो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले

0: दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: خبرن انتظار آکاشوانی دهلی کنا سناب نت بین میریم تو گنا انگشش بن ابجی کلا هرس میریم و سانچن قب گنا انگشش بن ابجی کلا هرس اف ام ارگای شهری چک مگه هر زنو موبایل اپ نیوز آن هر کانچا آکاشوانی گرگیل کنا زرین نت وقت مانی می بجانی سن منت سومچ سونسوب گن مزات بلتی پروگرام ارگاس کات پروگرام ان سرتان سه پروچکان بین عقیل حسین

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब खबरें नशर की जाएंगी।

आकाशवाणी है। अब आप माजिद अली से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरकार के मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमत हासिल करने वाले 51,000 से ज्यादा लोगों को तकर्री नामे सौंपे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत नौजवानों को आलमी सतह पर रोशनास कराने और मौके पैदा करने के लिए दुनिया के कई मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। बिहार हुकूमत अगले 5 वर्षों के दौरान रियासत में 1,00,000 असातिज़ा को मुलाजमत देगी। CBSE ने 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तहान की जवाब की कॉपियों की स्कैन नकल हासिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 24 मई कर दी है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में वजीर आजम मोदी से मुलाकात करेंगे। WHO ने कांगो में इबोला की बुंडी बुगियो किस्म के खतरे को बहुत ज्यादा के जुमरे में शामिल कर दिया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों और तंजीमों में मुलाजमत हासिल करने वाले नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्री नामे तकसीम किए। पूरे मुल्क में 47 मकामात पर इस रोजगार मेले का इनेकाद किया गया था। मुलाजमत हासिल करने वाले नौजवान जिनको पूरे मुल्क से चुना गया है वो वजारत रेलवे, वजारत दाखिला, वजारत सेहत और आला तालीम के महकमे समेत दीगर कई वजारतों और महकमों में शामिल होंगे। रोजगार मेले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के तरक्की के सफर में शामिल होने के लिए बेकरार है। जनाब मोदी ने कहा कि मौके और मुलाजमत दस्तियाब कराने और मुल्क के नौजवानों को पूरी दुनिया से रोशनास कराने के लिए भारत दुनिया के अलग अलग मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि भारत पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन शराकत दार बन रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के आजम के लिए हर भारतीय काम कर रहा है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के नौजवानों के लिए मुलाजमत के नए मौके पैदा किए जा रहे हैं। पार्लियामानी मूर और इत्तलात और नशरियात के वजीर ममलिकत एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार ने 2047 तक विकसित भारत को अमली जामा पहनाने का तहैया कर रखा है। उन्होंने ये बात चेन्नई में ICF रोजगार मेले से खिताब करते हुए कही। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मुल्क डिजिटाइजेशन, रोजगार के मौके, बुनियादी ढांचे और कारोबार को आसान बनाने के मामलों में तेजी से तरक्की कर रहा है। डॉक्टर मुरुगन ने बताया कि वजीर आजम की यकीन दहानी के मुताबिक अब तक मरकज ने 12,00,000 रोजगार मुहैया कराए हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाहात, तब्दीली और कारकर्दगी जैसे उसूल सरकार की कामयाबी का राज हैं। जनाब मुरुगन ने अवाम पर जोर दिया कि वो सरकार की मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों और प्रोग्रामों से वाकिफ रहे।

कविता कृष्णमूर्ति और मनहर उदास की आवाजों में सौदागर फिल्म से था ये गीत। इससे पहले आपने सुना विजय पथ फिल्म का नगमा कुमार सानू का गाया हुआ। इसके साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस की नशरियात जारी हैं और आप हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। सूबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डोगरी लोकगीत।

डोगरी लोकगीत सुने। अब आज का ये प्रोग्राम खत्म हुआ। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। आइए अब सुनते हैं कुछ फिल्मी नगमे।

जब फिल्म का नगमा अभी आप सुन रहे थे अलका एस जानकी और बप्पी लाहिरी की आवाजों में, प्रोग्राम की अगली पेशकश कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में है। फिल्म का नाम है नाजायज़।

फिल्मी नगमों के प्रोग्राम की अगली पेशकश अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार की आवाजों में है। फिल्म का नाम है जवाब हम देंगे।

फिल्म का नगमा अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति का गाया हुआ। प्रोग्राम की अगली पेशकश सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल को सुनिए। फिल्म का नाम है मेहरबान।

सफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में ये नगमा शगुन फिल्म से हमने आपको सुनवाया। इसके साथ ही फिल्मी मौसिकी का आज का ये प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नश्र की जाएंगी।

0: जाची लोग
1: पालजेस डोलमा कानी
0: जांगला
1: नी आ तेने जांगला नदी का चेस हो
0: ये कहे मां फेशो ने हम क्या अजून डोसा तीजु हिमत
1: डोसा से डोसा ने सुदी
0: ओले
1: याले डोसा लुई तंस पर यू गट टू स्किप पोटिक चैनल तंस
0: तो यांग लुई तंचिन बले माने यांग जी देते सेबे खया तिंग बन तंचिन मने
1: की
0: पोचे दिया ता डोसा पान चुई दियो नो ता यांग एक यांग फेशो ने यांग डोसा चोंग यांग डोसा चोंग दी ले कसे
1: तने डोसा ने यते चीची हो सता सरी दे
0: ता चो दे ले ता मा सो चे दा छुरते दा बा मा दा बा ई मो चे ती दुजी चो दे ले कसे पाल खाचे यांग चे तो चे ती दुजी
1: चे जर ना का तो चे ना ता खंग बे पिया ने या चोंग जिन चीची
0: चोंग जिन ले कसे
1: या मार ओमा सा
0: मार ओमा सा मा चोंग जिन कसे मार
1: छुरा चोंग
2: जिन नो मार छुरा गुन चोंग जिन
1: ले
2: ना मेने नाम मार नाम
1: या या मार गार चोंग बखेर छिन दे
2: ताई ले चोंग बखेर
1: ले या
2: ले
1: देने गता टोक्सा न देने गता मार जेरे चा जेरे दुन गम खों सन देने दुनि का गुजारा चोचिना या
2: गुने का ए दे चावा चत पोसेले
1: हंगति
2: गुल्ला नाचा गुल्ला टेंग मो यों चेन ब
1: या या तुत्र रे जाचिना
2: तुन डोक्सा ला जाचि मै यखोन रिगा ससा ता चले ए ओमाल थाति थाति माने रोसा खेरसि मनले
1: ए तने गति पोमोन थंगवा अर डोक्सा दुसवा संग जिंगबाति लासु सुसु
2: जिंगबेलांग चोचेन पोमोगुन मा जोंपो जिंबा जिंगबेलांग चोचेन रोक्सा लांग चोचेन जोंपो जोंपो नो हामो हामो छुरे आबा गुन ता नो या
1: डोक्सा गति आछे न मुन थंगवा चिक सु छछे न कि या अलग अलग या लोक्सो लोक्सो
2: रंग रंग ससे नांग नि छचेन रंग रंग ससे नांग
1: सामरे जा रो गता डोक्सा गता
2: रोक्सा या yalda sumbu deno ya enzo zogun khonari ga sotha yabeno zo ya je chigun e bomo pashi dimo othama oma tat kieno doksa ralu
1: ralu
2: ralu thama
1: le khama ta gati achinumun ya doksa so pasang khampa gati tu azuga kharchi gachi suchu
2: khampa la chome phul hen jin de pa khona aba gun kharchi chos jano
1: ta gati tu sukul la chacha na
2: tu sukul la chache la ngajan doksa ni mo yo lepchen de
1: lepchen
2: na doksa thu gun thit chachi man tene indosa khampa thu upor ta ban thu la kharchi chol la lok te onche मै जों पनो पले
1: तने दक्षा तांगा तांगा डोक्सा गाता यार पुछो तने तास्तुल ला चतुक ला सुचो छि खास कर गति
2: तास्तुल ला गजा डेंट्रा था छि लुत तन छि डोक्सा छो ते नो या डोक्सा
1: लुत गति लुत तन छि ना नोर बाला
2: गली लुत खुई गलाई खुई तांग जन खुई गल खोंग जन रोसा लि पाते
1: खुयु या गति नस यो छि
2: ओ नस यो जन ट्रो यो जन शेन मा यो जन
1: या या
2: हे
1: तने खास कर गाता स्किज जुक छिसाना खास कर गाती डोसा गाता अछेनुमुन गचुक स्किज जुक लुरी तंग से या गाता गचुक गामिक छु छि
2: हिपोरि चोचन या हिपोय गालाने हिपो चोचन तादु पुथोंग दानानी या

Tashi lamo.

0: अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: रोजगार मेले में आज 51,000 से भी अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घनमीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क

आकाशवाणी करगिली फेसबुक प्रोग्राम गांधी कसल दिरिंगी सिरपुआस नंगाबियत खान रिंचन सरमचुंचे गंगमा यंग रिशिक यंती मेजबान सज्जाद अली शुजाती जुना सलाम स्नेर दा जगत यंतंग अमल सचगी का जुक्से नचिदी फेसबुक जगर क्रिमी सिरपुआस नंगाबेन योतना नतमेत सतमेत मिचे स्किटलेन दुक्तुक रिंचन यन खानुन अरगल बिसिरपेंग Mates Ahmadabadi Mazdur Nah Lesm.

0: ka chacha inzu nispera de ka jakse dena UN Global Road Safety Wigi skorla hagori klepchuge sir Abbasi sir Muhammad Abbasi kana
1: sabse pehla program yani nutkan saga assalamu alaikum aur akashwani karyala bahut bahut shukriya ngatika UN Global Road Safety Week ka zirbi mauka tanspe आठवां यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक जिरे मेलाओ देश कोना कोने अनुक मई 12 से मई 18 सुपिक दी हफ्ता पूरा दुनिया ते अनुक रोड सेफ्टी फिया मन लाइकों कनिन दी हफ्ते रोड सेफ्टी स्कोर ला म्यूला हगोता मी फिया मनाई बखन इन ताकि दी स्ट्रोली का म्यूला पता छो कि ट्रैफिक रूल सुनी धदुल बचाओ चमशिक सजा इन सुक और मतंग रोटी का गाड़ी इंस्टॉल सना चाम शिक नती स्पीड पुल लिमिट एंड शक पर गोशा इन जो चा जरवाना दक्षन जो पिक नता पूरा दुनिया ही कोना कोने अनु नता खबर छोर बस छिंदुक की आ फिलान पे नुक रोड एक्सीडेंट ही बारे नु नता दुनिया ही कोना कोने अनु नता छोर बस छोरिंदुक और दक्षन जब पिक नते अगर का तो जेर ना रोड एक्सीडेंट ही वजह से का दुनिया ते नुक चाम शिक मी शीशे इन जो और मी बांध शिक मना अपाहिज क्यूरे डिसेबिलिटी क्यूरे खची लाखपा खची कामा खची मिक्सर लुसिन सुख और एक सेंसेस के हिसाब से गता पता चिंदु की दक्षण सपिक रोड एक्सीडेंट अनुक 1.2 मिलियन पीपल दक्षण सपिक शिशिन सुख और 50 मिलियन से जायद रांगता दी मीन जख्मी सोचो तीन सुख पूरा दुनिया ते अनुक और एक सेंसिस में गता पता सोचिन सुखी दी दुनिया ते अनुक चौम से एक्सीडेंट सोचिन एक्सीडेंट पे अनुक सबसे ज्यादा शिखन बुदक संगति जवान उनके मोयो तीन सुख चाना दून मीछा चुपी फिला WHO जरे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज यूएन ला यूएन कमीशन ला कोआ जेरिन सुकी गते दी यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक पो म्यून ला हगो तो मी फिला स्ट्रुल भी जरूरत तुक सरे यरा दी यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक पे नुक मीन ला हगो तांचिन की अगर रंग छन चेका तो छचिन का तो छचिन न या रंग डुले छचा या साइकिल का छचा क्योंकि साइकिल का छागा तो छाना का तो गता सबसे फायदा चिक चिक दो यो तीन सु कि चाम शिक अगर का तो ते साइकिल इस्तेमाल बे दिया गता डुले का तो छाना का तो गते गाती माहौल पोंसाब जक चिन सु और चियन गन गता रोड नि कना दी एक्सीडेंट दर कनि स्पेरानी कना गता थागरे इंसान लुशा इन सु दी एक्सीडेंट साइकिल ना थागरे लुशा इन सु गती हिंदुस्तान यानो दी रोड सेफ्टी वीक जरे 11 से 17 जनवरी सुपे हर साल यारा जिरना मीन ला हागो ता मी फिला 11 से 17 जनवरी यानो पुन ला मीन ला जिरचिन सुकी गते रोटी का चुक चुक रोड सेफ्टी सख फॉलो बार गोशिन गा का रूल जन फॉलो बार गोशिन ताकि दोन न्या नेरिया पुना ता रोड एक्सीडेंट पु कम छ नदी हिंदुस्तान यानो रिपोर्ट जी के हिसाब का दक्षन सपे गता छोर बचिन की 150,000 से जायद हर साल में रोड एक्सीडेंट अनुक शेयर चुके राजर ना चना दी दुनिया ये अनुक चामशे एक्सीडेंट जतं खेमो जाहिद से मी चामशे एक्सीडेंट जतं उते एक्सीडेंट उन मिचा चुपी फिला गती जिंदगी उचाम सिंह गती फिला अनमोल इंसुक दी एक्सीडेंट उन मिचा चुपी फिला गता हागो तामी फिला सबसे कौन इसको आगता दिया नुजर चिंसू की आतंग अगर का तो गात सुन से स्कूटी टू व्हीलर गाड़ी स्टूलेन का तो न हेलमेट गोन मार गोशिन सुक आते इसका ती गाड़ी इंस्टॉल से न सीट बेल्ट तक से जाक पर गोशिन सुक ट्रैफिक रूल सक फॉलो बचा अगर का तो स्पीड गाते चिंगन गन पुल लिमिट यहाँ जाक चक कम स्पीड यहाँ सुल चा क्योंकि गाती क्योंकि गाती चाम शिक गाड़ी स्पीड यहाँ गतो गतो न कतो देर से पुंगता एक्सीडेंट खेमो छे चांस पो खेमो चाची ने रहा जन और गता रोटी का गाड़ी स्टूल सना ज़्यादातर पर ड्रंग बसे मिडुल चा ड्रंग का तो बसे उतना का तो यहाँ गाड़ी खुआ स्टूल बा खाशिंग जमीन जो उस वजह से एक्सीडेंट खेमो चाची सो बाकी यहाँ गा ची सुनिस खुआ अगर का तो डिस्ट्रैक्ट का तो वेद ना का तो दोन सक चीन इन बुखोस था नहीं सकता गाड़ी स्टूल सना रोड सेफ्टी वीक दक्षा दीदी रोड सेफ्टी वीक भी अनुक चीन यान पुल लोकल कम्युनिटी सा स्टेक होल्डर सा गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन योतना या स्कूल पर सक्षम शी योतना का तो दोन गांव में दी रोड यूएन रोड सेफ्टी वीक सरकार पे अनुक दी दिन यान अनुक मन खक लें जा दो मन जरूरी इंसुक चीन यान पुयों से यान जा चाना दोन यान अनुक छो छो सिलोत खानी मीन उन्हें जनता हागो थांग चिंसुकी गता गाड़ी स्टूल सना वोते गाड़ी इंस्टॉल सना गता बहुत सारे रूल्स का चीज़ होंचिन जो दे रूल्स उन फॉलो बचा अगर गता मार्केट एंडुलेन का तो न का तो डिसिप्लिन नंबर रंग साइड पे दुख से गाड़ी स्टूल चा अंजलत बाजी में बचा चीन एंड पुदल बचे बच और नाम संगतंग मार्केट एंड ओवरटेक का तो बचिन न का तो ओवरटेक भी फिलहाल

0: इंडिकेटर्स का इस्तेमाल बचा, साइट इंडिकेटर को इस्तेमाल बचा और गा साइट चिका तो लेने का तो चाची ना दे साइट इंडिकेटर को लेने चाचा, ताकि दे इंडिकेटर की वजह से कर क्या भी गाड़ी इन फोकपा में तंग एक्सीडेंट पुरा कम छे तंग और दो ना गाता ब्लाइंड स्पॉट जरे गाता गुम खची मत गंग गाता मत चौ में तो मत अगर ते नु गाते चीन इन स्पीड को कम बसे का तो रूल ना एहतियात गति फिला मन रिया लाइन अगर ब्लाइंड स्पॉट यानो यरंग अरे स्पीड भी का कंट्रोल का तो मत पका तो न गतो एयर नाम खानी गाड़ी नंबर टक्कर सो से एक्सीडेंट से चांस भी खेमो इन चाना ब्लाइंड स्पॉट से गन चम शिका तो छा का तो चाना स्पीड पु कुल्या दल बसे छा चाना दी यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक पुंगति लदाखी जकी हर जगह गता मनाई बखनिन रोटी का डुल सना और रोटी का गाड़ी स्टूल सना चिबस स्टूल बाय अनचिन चिबस स्टूल बार गोशिन गचुक कचु रूलन फॉलो बार गोशिन दीदी रूलन फॉलो बार गोशिन ताकि गता एक्स रोड एक्सीडेंट बुंगा ता कम छेता यार हाजिर न का तो और गती चामशी अगर का तो गते रोड पे एक्सीडेंट बुका तो कम का तो जका तो छना गती जिंदगी गती फिला मना अनमोल इन छना गता दो इंसु ग्यारह दो गति इंसु की अगर का तो गा गाड़ी गते रोड चिका स्टूलिंग का तो न का तो दल वसे टूल छ दल मो नंबर स्टूल छ गति आ तो अपे तमले में मत लम रिंग्स ना छे रिंग्स रे चेन इन पु दल वसे डुल न का तो दे सपो यारा रोड एक्सीडेंट बुगाता कम छ छ इंसु नक्सन गता रिसर्च हिसाब का पता छिंदु की गति कंट्री चौक से नानु गया बाहरी देश से नानु सबसे ज्यादा एक्सीडेंट पुसुए छात्र सुनी जरबना सुनसे फ्रुसक और दोना छिमी आपोसा खेमो सोंसियो तिनसुक छाना दून मीछा चुपी फिला रोड साइड गा में कंगता है रंग से नका तो साइन बोर्ड ता सो ते साइन उन फॉलो बसे रदे मु बसे डुलचा और 18 साल के ने गिन ला सों से मैंने मत पा रंग फ्रून ला गाड़ी उस टूल में स्टूल चुचा और स्टूल आम स्टूल चा और गा ड्राइवर चिकिस अगर का तो गाड़ी का तो स्टूल इन का तो नका तो कोई लगा प्रॉपर लाइसेंस जो मां जरूरी इन लाइसेंस जरा मना जरूरी इन लाइसेंस पुतब थप चिन जब यारंग सीनियर रिक्सों से मत पा यारंग लाइसेंस पुतब चमिन चाना चाम शिंगन पु सीनियर सों से मत पा रहा गाड़ी इंस्टॉल में स्टूल चा और सीनियर सों से रिया पुना यारंग लाइसेंस आन थप चिन लाइसेंस थप रिया पुना यारंग पता चा जिन की गस एहतियात बसे गाड़ी इंस्टॉल बार गोशा इन सो क्योंकि गा सीनियर ड्राइवर शिक छिमी रमी अगर का तो खुश रोड सेफ्टी रूल एंड फॉलो का तो बेन का तो इतना का तो खुएस दरालुई का गति सुनसे फ्रोन इस कान इस चोक चोक सा बेन होता या जवान होता कौन कौन ही दिन देखा डुलचा इन रोड रूल सगो मत कोई रूल सग का मा फॉलो बचा साइन बोर्ड सगो मत दोन का मा फॉलो बचा चाम शिगंते थी रोड सेफ्टी रूल उन साइन बोर्ड उन फॉलो का तो बाका बद्दा बाका तो बना देत सिख पुया रंग जर ना कतो गा तंगा एक्सीडेंट पु मना कम छे चांस के मुछा चा इन चाना दी एक्सीडेंट उन मिशा चुपी फिला गाचेस बार बार रूट सेफ्टी रूली बारे रेली सफीन दुखपत और सोशल मीडिया थ्रू यंता अवेयर हम इन दुखचिन कि रूट सेफ्टी रूल्स उन डरते मो बसे फॉलो बचा और सबसे ज़्यादा गति ड्राइवर सगा कि सीट बेल्ट मना तक पमित गता क्योंकि गता मैक्सिमम गता गति बाजार थोंग मशीसित की अगर पुलिस या ट्रैफिक पे कुछ करो ना तो जल्दी सीट बेल्ट पे से सीट बेल्ट पता छना दे सीट बेल्ट पो दे पुलिस पे या ट्रैफिक पुलिस पे फिला मेन छना दे सीट बेल्ट पो गति फिला इन गति जिंदगी गति फिला अहमियत इन छना दे ट्रैफिक पुलिस बन थोंग मना सिर्फ सीट बेल्ट पे मिता छा जो गाड़ी स्टार्ट बसे जब स्टार्ट बेतन दे छना चौक तक छा और बसे पार्किंग तक छना जो बसे सीट बेल्ट पो पुछा छना दोन गति फिला मना रिक्या लाइन क्योंकि गता गा दक्सा थोंग मैसे सिद्धि की गते सीट बेल्ट जर बना मना हल्के एक बासे लेने सीट बेल्ट मतक नडिक चिन बहाला समय दे चना दी गाड़ी नि गा सीट बेल्ट पुछो सिन का तो दोनों अहमियत हो चिन यारा दोनों रते मु बसे तक पर हो चिन क्योंकि एक्सीडेंट का चीन अनुक अगर का तो सो से का तो स्ट्रोक का तो बचाई का तो छाना दे सीट बेल्ट की वजह से कह रहा बचाई छा था पता चिन दे कि दी ड्राइवर पुजिया आमी सीट बेल्ट को तक छाना दक्सा अगर का तो गा ड्राइवर ची सीट बेल्ट का तो मत लापरवाही का तो बसे देन द स्टूडेंट का तो न का तो एक तो ना खुरी जान पर खतरा दूसरा शाम शिको ना मुसवारी का तो ना दोनों जिंदगी को खतरे में लिपचा इन छाना एहतियात मना जरूरी एहतियात बचा और लास्ट पिका यंतंग सगा गानिस दी प्रोग्राम पे न्यान इनका दोत का दोत ना प्लीज यंतंग सगा गुजारिश इनकी गाड़ी स्टूल सना बराबर रिंग्स पामा बा तल बसे सीट बेल्ट उन तक से ट्रैफिक रूल्स ऑफ फॉलो बसे आराम बसे दल बसे स्टूल चा वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात
1: दक्षिण सुपा यंतिस यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी विगीस कोला सर मोहम्मद कनास पेररिगार नाबेन युतपिन कसनी प्रोग्रामी संगसे का आखुन बाकर जीशानिस कत्यार सखमा स्तुत खेत लिप चुगेत स्तुत खालार नबाजाद या बिस्मिल्ला।

0: Fun jamaat rugi kana jamaat shchu chakpe fun las go zetang ser deluxe pur tan pu jak pe minan la reception fyor son esko la ha gon tans
1: ya fun la nat ti shi tiana tagring du pe fia li akmo bas eduk chaz na kyuchan na zas na on zacha si scorpion ok ha go spell wasong di tu speaker deluxe si kha kurunis iron na folic acid tablet un jamaat trupa na jamaat shchu pe an las go aso sin kortan si la shu pe ka school intizamiye chosnar deluxe las kun si kha kurun la shas pel vi fia u ju zerein purgis na sulming na sanko subdivision na muhammad musa
0: पंजाब दरी रेल कोच फैक्ट्री आरसीएस का पुरथला ना पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला चुरगुई रेसी लास्केल तन में खाल सिर बस दिलता में नु मिंगा नि बियन इशुबी ने चिका अपॉइंटमेंट लेटर सास गुसे तांसिन आरसीएस का पुरथला पेट्रोलियम ने कुदरती गैसी मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरिस प्रोग्राम में गोयत बेंचिक दि लास्केल तन मु जमेदला क्युचनस गैस्ट्रिक स्टॉल चिकदान इंजरे सर से दिर गब नखों सम लास्का थपखर मिंगार गुपचु ना सुमा अपॉइंटमेंट लेटर उन सकास को सेतांस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास इस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास ला काउंसलिंग खुरतां शिग्राल बसे फ्रूनला जमात चुंगिस पास बसेर गबना अंडर ग्रेजुएट दाखिला उन स्कूल ला हगुंतांस दिवस ला असिस्टेंट प्रोफेसर ने कन्वीनर एडमिशन सज्जाद हुसैन से फ्रूनला दाखिले लसिर उन सब्जेक्ट सगमी फेस बेस को ला सिरेन या प्रिंसिपल नासिर शाबानी इस कॉलेज छोसना शेस लेन खान फ्रूनला यत खान लोसो सहूलियत ने स्कूल लजरन फ्रूनी छोसना त्रिस खान त्रिसों ने लेन पोंग अलसोक पसों ऑपरेशन सदभाने नालजोंस गैस्ट्रिक इश्मखमिस हफ्ता चिकपा वाली बालियर से न्यूज दूर चिक के साथ हमसे खत्ते नुकमल इंखोस दे वक्सला टूर्नामेंट पे लोकसो गामी लुने टीम मर्गिया तेज खागलेंस यहां लाजुग इस दूर पे टीम सिल्मे करगाले टीम सरसेस खता पुल्ला गंखेरेन दियावरेन काउंसलर फेरोज अहमद खान इस लाजुग इस दूरी तकरीब में फेसबुक डॉन फेस दोस्ते का खागलेने इस गैस्ट्रिक इश्मखमिस शख्स ने दिर से न्यूज ग्रल सिर बसे सिविल नश्मखमी बने लखत पुलिस के तामीमीन लेंस खान गोमबे स्टो दरबस बिहारी वजीर आला सम्राट चौधरी यूं मिलोगे वक्त शेष सभी मलसा लाख चिक इस कांचा इंद्र जर से शेष महकमे तलुक से ग्राफ चिक वक्त वजीर आला सा ऑफिसर उन लो बीमा मिंगस्तो निशुर सागर सागा शेष सभी लास खान तो जरे खास कौन तांसेन कौन दी मलसा ने मीना लो बीमा नोटिस पुलो जुलाई जैनुक फिंचा इंद्र जर से दिया बरियान शेष और यलखा के वजीर मिथलेश तिवारी वजीर आला इस और इर्गे अपना शेष साहब खान उन सखचुक पी टी आर ई फोर पी फिर ऐसे कबल अजबरदन नक्सन छुम से इंद्र सिर से पेट्रोलियम कुदरती गैस दोनों सरिया से मरकजी वजीर ममलकत सुरेश गोपी थिरुवनंतपुरम लस्केल तनमुला गोजोबास चुरगुई रेसिस गैस्ट्रीति लस्केल तनमे जोस्ते का ग्रल बस खान इन मेन दिवसल तनमे नु खगलेन खान मीमा सुन नगरगन वजीर मौसूफिस वजीर आजम नरेंद्र मोदी छोगना दिरिंग गोजोक बस भी दिल तनमे तोनपो लस्के वक्स उन सख शर्बना चुन ला ताचास पु इंजरन अपॉइंटमेंट लेटर उन सख असगो से ताचास पु लेगिनर रिंचन गोजोक चिग इंजरंग असेरेन जिनाब गोपी शर्मा नाजून ला खुंती खुत तो यस्त्री तिर चौखे मीनास पाल वर्गो सुजरन विकसित भारत तोन पु गारिया बजरंग अजर सेत खोजन थिरुवनंथा पोरम ना जनूबी रेलवे छोखना ग्राल बसखान दिस्तान में वक्ता मिंगफेस छखन मिंगा अर्गेना सुमचो अपॉइंटमेंट लेटर इन सगांग अस खो सेतंस कसता खबर इन छासे का नमजा स्कोर ला दिन करगी लगी मा नमजा थासलु जान दिन यमि छति थिक पु करगी ला चुगया दे शारी अर्गे डिग्री सेल्सियस दुना गोंदे छने छति थिक पु गा इशारिया अजफी डिग्री सेल्सियस अर्तख नबस ले दिन यमि छति थिक पु चुदुन इशारिया निस डिग्री सेल्सियस दुना गोंदे छने छति थिक पु निस डिग्री सेल्सियस अर्तख नबस द्रास ला दिन यमि छति थिक पु चोगा इशारिया अर्दुन डिग्री सेल्सियस दुना गोंदे छने छति थिक पु सुम इशारिया त्रुक डिग्री सेल्सियस अर्तख नबस ध्यान चोखला पदुम दिन यमि छति थिक पु चोगा इशारिया अर्दुन डिग्री सेल्सियस दुना गोंदे छने छति थिक पु 0.1 کو ڈگری سیلسیس ارتخس نواز دیونین من در سقوی پرگی خبرن نائزن شزده باز یشو خدا نشت زمانی فقریم

0: या दफ्तर या हट्टी का जुक सनंग बांगन चाइन आकाशवाणी गा केंद्र चिकी का एडवर्टाइजमेंट बुकिंग आकाशवाणी लोकसो चैनल उनका एडवर्टाइजमेंट तंचाओ समो दोना रिंगिन से होत बुकिंग बेफिया कॉल बाजात 8700014242 का।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
2: 8700014242।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है।
1: तो रोका किसने है?
3: 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: इस रोजगार मेले के सिलसिले में कन्वेंशन सेंटर जम्मू में भी एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें डिविजनल रेलवे मैनेजर जम्मू विवेक कुमार मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। तकरीब में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जम्मू के चेयरमैन संजय त्यागी भी ने भी शिरकत की। इस दौरान जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 229 नौजवानों में तकरीरनामे तकसीम किए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि 43 रोज पहले जम्मू से शुरू किए गए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान अब जमीनी सतह पर एक ताकतवर तहरीक में तब्दील हो गया है और यूटी की हर गली और हर कोने से ये आवाज आ रही है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी ड्रग्स स्मगलर को न बख्शा जाए। हमारे शोपियां के नुमाइंदे जानिसार अहमद ने खबर दी है कि आज शोपियां में मुनशियात मुखालिफ पद यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद खिताब करते हुए LG ने कहा कि इंतजामिया के साथ साथ आम लोग भी जम्मू कश्मीर से टेररिज्म को खत्म करने के लिए पुरजम है। उन्होंने कहा कि मुनशियात हमारे नौजवान पोत को अंदर ही अंदर खोखला करके उन्हें तरक्की की पटरी से हटा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अभियान शुरू होने से अब तक 797 FIR दर्ज किए गए और 894 ड्रग्स स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 457 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए गए और 606 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख की गई है।
2: नशामुक्त जम्मू कश्मीर के हद में दो पुख्ता इरादे और जोड़ने हैं, नार्को टेररिज्म को जड़ से उखाड़ फेंकने और उसके पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के लिए हम सब तन मन धन से काम करेंगे और नशा तस्करों और उनके आकाओं को आवाम से खदेड़ कर ही दम लेंगे। सोपहिया की मिट्टी से इस वादे के साथ आज हम दशकों की खामोशी भी तोड़ना चाहते हैं। भय और स्टिग्मा की वजह से वर्षों से चुप परिवार अब खुल करके कहने लगे हैं कि आतंकवादी पड़ोसी मुल्क की सब पर चलाए जा रहे जहर के इस कारोबार को कश्मीर घाटी में चलने नहीं दिया जाएगा।
1: जम्मू कश्मीर को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां शदोमत से जारी हैं और मनशियात के ढांचे को खत्म करने नीज इस लत में फंसे नौजवानों की बाजाबादकारी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। मनशियात से मुतालिक LG मनोज सिन्हा का पैगाम।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस बिद्दत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के ताल्लुक से एक उस्ताद मंजीत सिंह गिल ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
3: मेरी तरफ से बच्चों को यही पैगाम है कि नशा आवर चीजों से दूर रहें और अपने माशरे को बचाएं। नशा एक खतरनाक जहर है जो नौजवान नस्ल के ख्वाब, खानदानों का सुकून और माशरे का मुस्तकबल तबाह कर रहा है। मेरी सब वालदेन, नौजवानों और समाज से पुरजोर अपील है कि इस बदतरीन आदत से दूर रहें, अपने बच्चों की सही रहनुमाई करें, क्योंकि यही हमारा मुस्तकबल है। हमारा फर्ज बनता है कि हम सब मिलकर नशा से पाक, महफूज और रोशन माशरा तामीर करें।
1: पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए श्रीनगर जिले के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रग्स मलगरों की 5 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद को अटैच कर दिया है। पुलिस ने अवंतीपुरा, अनंतनाग और सोपोर में 4 ड्रग्स मलगरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से काफी मकदार में नशीली अद्वियात बरामद की है। पुलिस ने उच्चर मागाम हंदवाड़ा के बिलाल अहमद खटाना नामी ड्रग्स मगलर की 15 लाख रुपए मालियत की जायदाद को अटैच कर दिया है। पुलिस ने पुलवामा और अनंतनाग में गैर कानूनी तौर काश की जा रही खशखाश को तबाह कर दिया है। जल शक्ति और कबायली उमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट की अमलावरी का जायजा लिया। वजीर मौसूफ ने इस मौके पर अफसरों को हिदायत दी कि वो इस एक्ट के साथ साथ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में कबायली तबके में जामे बेदारी पैदा करें। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के वजीर सतीश शर्मा ने आज बादामी बाग कंटोनमेंट श्रीनगर में जारी NCC के स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप 2026 में NCC कैडेटों के ANOs से खिताब किया, जिसमें मुल्क के 17 NCC डायरेक्टरेट से ताल्लुक रखने वाले 340 कैडेट शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने नौजवान

आदमी खिलौना है फिल्म से आप गीत समाप्त कर रहे थे, जिसके लिए मोहम्मद अजीज का साथ दे रही थी अलका याग्निक। फिल्मी गीत अब आकाशवाणी करगिल से समाप्त कर रहे हैं, प्रोग्राम है फौजी भाइयों के लिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम सूद पर लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दूध का कर्ज फिल्म में अभी आप मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल को सुन रहे थे। गीतकार थे नंद बख्शी और संगीतकार अनु मलिक। प्रोग्राम के आखिर में पेश है गिरफ्तार फिल्म से गीत, आवाजें हैं कुमार शानू और धीरा घोष की। इंदिवर किल के इस गीत को संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

0: آکاشوانی کرگل سے آپ سے مخاطب ہیں. خبروں کا اوقات چاہتے ہیں آپ. ہم آکاشوانی دہلی سے ہندی، انگریزی اور اردو میں خبریں ریلے کریں گے. ریلے کا تھوڑی دیر انتظار کریں.
1: کے ساتھ میں مکیش کمار بل. مکھیہ سماچار. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है. महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया. केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा. चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत. और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता. और अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की. श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमरीका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे. इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे. प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी. श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया. श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई. श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है. नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है.
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं. इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है. हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है. निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है.
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध

0: मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: विकसित

0: उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। ASCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या ASCAT.edcil.co.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
1: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
3: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में

0: महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
1: विकसित भारत 2047 जब उस गोल उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
0: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विकसित भारत जीरामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल है। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल किउआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23

0: reports last came in, earlier Punjab Kings won the toss and opted to field. Retired officer of the Indian Information Service, Triloki Nath, passed away in New Delhi today. He was 79 years old and was unwell for some time. He served for many years as news editor in All India Radio. The Indian Meteorological Department has issued a red alert for heat wave to severe heat wave conditions over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbh tomorrow. Similar conditions will prevail over Haryana, Chandigarh and Delhi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. U.S. Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States' approach towards Indo-Pacific region. Defense Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defense manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Center asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defense infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China, and Indian grappler Suraj Vashisht and Sagar Singh clinched silver medals at Asian Under 23 Wrestling Championships in Vietnam. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फैसल खान. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात का पुरअमन हल निकाले जाने के लिए भारत की लगातार हिमायत का इरादा किया है. अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारत बहरुल काहिल खित्ते के तहत अमरीका की हिकमत अमली में भारत को मजबूत बुनियाद करार दिया है. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत दिफाई सामान तैयार करने के शोबे में खुद कफील बन रहा है. वजीर मौसूफ ने महाराष्ट्र में शिरडी के मकाम पर तोपखाने के गोले तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह किया. मरकज ने नई दिल्ली में जिमखाना क्लब से कहा है कि वो दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की खातिर अगले महीने की 5 तारीख तक अपनी जमीन हवाले कर दे. चीन में एक कोयला कान में धमाका होने से 90 अफराद की मौत हो गई. और भारतीय पहलवानों सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में 23 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चांदी के तमगे जीते हैं. अब खबरें तफसील से. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में भारत अमरीका जामे आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त और इलाकाई और आलमी अमन सलामती से वाबस्ता मामलों पर तबादला ख्याल किया. अमरीकी वजीर खारजा ने आज दोपहर नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि भारत और अमरीका आलमी सतह पर फलाह बहबूद के लिए करीबी इश्तराक से काम करते रहेंगे. वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल भी मीटिंग के दौरान मौजूद थे. वजीर आजम के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि जनाब मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म मोदी को मुख्तलिफ शोबों में बाहमी इश्तराक की पेशरफ्त से वाकिफ कराया. इनमें दिफा कलीदी टेक्नोलॉजी तजारत सरमायाकारी तवानाई की यकीनी फराहमी कनेक्टिविटी तालीम और आवाम से आवाम के राबते शामिल हैं. जनाब मोदी ने मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए तनाज़ात का पुरअमन हल निकाले जाने की बात दोहराई और क़याम अमन की कोशिशों के तहत भारत की लगातार हिमायत का इरादा किया. अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के 4 दिन के दौरे पर आए हुए हैं. वो इस महीने की 26 तारीख को क्वाड वजीर खारजा की मीटिंग में शिरकत करेंगे. जनाब रूबियो आज सुबह कोलकाता पहुंचे थे जहां वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी गए और मदर टेरेसा की विरासत को खराज अकीदत पेश किया. अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे. उम्मीद है कि उनके इस दौरे से भारत अमरीका जामे आलमी कलीदी साझेदारी को मजीद तकवियत मिलेगी. अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका किस अंदाज से भारत बहरुल काहिल खित्ते के तहत अपनी हिकमत अमली इख्तियार करता है, इसमें भारत की मजबूत बुनियाद है. नई दिल्ली में अमरीकी सिफारतखाने की एक जेली इमारत का इफ्तिताह

0: सागर सिंह ने एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप के मर्दों के ग्रेको रोमन जुमरों में चांदी के तमगे जीते हैं। 60 किलोग्राम के जुमरे में सूरज वशिष्ठ कजाकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी से खिताबी मुकाबले में 4-0 से हार गए। वहीं 67 किलोग्राम के जुमरे में सागर सिंह को फाइनल में उज्बेकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी ने 9-0 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुजाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाजात का पुरअमन हल निकाले जाने के लिए भारत की लगातार हिमायत का यादा किया है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत बहरुल काहिल खत्ते के तई अमरीका की हिकमत अमली में भारत को मजबूत बुनियाद करार दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत दिफाई सामान तैयार करने के शोबे में खुद कफील बन रहा है। वजीर मौसूफ ने महाराष्ट्र में शिरडी के मकाम पर तोपखाने के गोले तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह किया। मरकज ने नई दिल्ली में जिमखाना क्लब से कहा है कि वह दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की खातिर अगले महीने की 5 तारीख तक अपनी जमीन हवाले कर दे। चीन में एक कोयला खान में धमाका होने से 90 अफराद की मौत हो गई और भारतीय पहलवानों सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में 23 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चांदी के तमगे जीते। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
1: सरपंच आकाशवाणी दिल्ली का ना हिंदी अंग्रेजी दोनों और खबरों स्नाब बिन मीडियम में त्रुज्ञान अंग शुज बिन अबजी को लहर्स मीडियम में सोचिन अफगान अंग शुज बिन अबजी को लहर्स एफ एम गैर शहरी चिक में गहर्स दोनों मोबाइल ऐप न्यूज और नया रिकांचस आकाशवाणी करगिल का ने जरूरी न्यूज वक्सपोस ने बाजार गुने मिनट सुमचो सुखियन में जब प्रोग्राम ये फायूल प्रोग्राम सिर्फ नौ से फ्रोचुखान पेन अमरनाथ प्रसाद

0: आज हम आर्यन वैली में हैं। आर्यन वैली लद्दाख क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण और खास इलाका है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह शुद्ध आर्यन है। आर्यन वैली में बहुत सारे गांव आते हैं। आज हम डारचिक गांव में हैं। डारचिक गांव में हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ?
1: मेरा नाम तहसीरुद्दीन है जी।
0: तहसीरुद्दीन
1: जी, मैं डारचिक गांव का हूं सर।
0: जी, अच्छा, यहाँ के लोग मतलब अपने आप को आर्य वंशज मानते हैं, इसके बारे में थोड़ा हमारे हमको बताएं।
1: हम आए हैं गिलगित से सर। गिलगित पहले से? हमारा दादा लोग आए हैं गिलगित से। गिलगित से आके हम उधर दानाला में बसे हुए थे पहले। उसके बाद दानाला में बैठकर फिर दा से नीचे आके उन्होंने दा गांव में थोड़ा उधर पत्थर ही पत्थर था, तो कोई गांव नहीं थे। तो उन्होंने इधर अगर उधर कुछ गांव होने वाला है तो ये तीर से हमको नदी नाली निकल जाए, तभी तीर लगाया तो उधर से दा गांव में नाली निकल गया, फिर उधर दा गांव में फंस गया। फिर उधर से एक आया गप्पो मारो गरकुन में ठहरा, गरकुन गांव में आबाद किया उसने। फिर उनका बहन था हुरबी, उनका बहन हुरबी था, वो आके दर्चिक में बस गया। फिर तीनों इसी तरह बैठा, फिर इधर खाते पीते आगे पीछे जाते इधर आते ही बैठ गया।
0: तो आप लोग यहाँ बहुत लंबे समय से रह रहे हैं?
1: जी जी जी।
0: आपके दादा परदादा यहाँ आए थे?
1: हाँ हाँ, हमारे दादा गए कि होगा कुछ 2000 साल होगा।
0: 2000 साल?
1: जी सर, जी सर, जी सर, इतना ही साल। हाँ। पहले तो हम आ चुके हैं, बाद में लद्दाख वाले और ये करगिल वाले तो बाद में बस गया, पहले शुरू में हम आ के बैठा इधर। जी, जी।
0: ऐसा माना जाता है कि
1: हमारे यहाँ हनु दा गरकुन दर्चिक था, ये चुली चांद भी था, चुली गांव भी। चुली गांव बाद में इस्लाम में गया तो उनका खत्म हो गया आर्यन, वो तो इस्लाम में गया, उनको तो कोई डांस शांस करने का तो मसाब में है नहीं, तभी था तो ये चुली गांव भी हमारा था। फिर पाकिस्तान में है उधर गनों में, फिर हमारा भाषा उधर भी मिलता है, वो पाकिस्तान चला गया, इस्लाम में गया, तो इस्लाम में गया तो अभी उन्होंने खत्म किया कल्चर। अभी हम चार गांव का कल्चर ही है। हमारा फंक्शन चलता है जनवरी में, हमारा लोसार आता है और लोसार के बाद आता है और इधर जून, जून में हमारा इधर मुला बोलते

0: डारची गांव में जी। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की जो सभ्यता है, संस्कृति है, भाषा है, वेशभूषा है, पहनावा है, सब अलग है। तो हमको बताइए कि मेरे क्या अलग है।
1: अलग होता है सर, इधर हमारा जो दा गरकुन दर्चिक तीनों का भाषा एक ही है, हनु का थोड़ा अलग होता है।
0: कौन सी भाषा है?
1: हमारा ब्रोकपा भाषा, ब्रोकपा अरियानी ब्रोकपा भाषा होता है हमारा भाषा, और कहीं भी नहीं होता है, सिर्फ हम तीन गांव में होता है। हमारा भाषा किसी को भी समझता नहीं है, दूसरों का भाषा हमको समझता है, पूरा उर्दू भी समझता है, लद्दाख की भाषा हमको समझता है, करगिल का भाषा हमको समझता है,
0: लेकिन आपकी भाषा कोई नहीं,
1: कश्मीरी भी हमको समझता है, हिंदी भी हमको समझता है, लेकिन हमारा भाषा किसी को समझेगा नहीं, हमारा भाषा मुश्किल है समझाने,
0: मुश्किल से
1: जी सर।
0: अच्छा, यहाँ के जो आर्य लोग हैं, आर्यन वैली के जो लोग हैं, वो फूलों से बहुत प्यार करते हैं, वो फूल का क्या महत्व है?
1: वही तो हमारा फूल है, हम देवी देवता को मानते हैं ज्यादातर, देवी देवता को मान के हम सिर में फूल लगा के देवी को मानते हैं। पहले जमाने में हम अंडा नहीं खाते थे, मुर्गे नहीं खाते थे, और गाय का दूध नहीं पीते थे, अभी तो अब बकरियां खत्म हो गया तो थोड़ा बहुत चलाता है, नहीं तो ये बड़ा ही आग का गोश वोश बिल्कुल नहीं चलाते हमारे गांव में, तीनों गांव में।
0: अच्छा, शादी ब्याह आप लोग कैसे करते हैं?
1: अच्छा जी, वही तीनों गांव में करता है,
0: उसी तीनों गांव
1: दा गरकुन दर्चिक,
0: दर्चिक
1: हाँ उसी में शादी करता है, आगे पीछे और लेस भी नहीं होता है, करगिल से भी नहीं होता है।
0: शादी ब्याह जैसे भारत में आम वर्गों में होता है उसी तरह करते हैं, अलग ढंग से यहाँ शादी ब्याह?
1: शादी तो अलग ढंग से होता है, डांस करता है ज्यादातर, हम डांस करता है, खुबानी का तेल खिलाता है खूब, हाँ अपना सातू के साथ पप्पा बना के खुबानी का तेल खिलाता है जी, ऐसे में शादी होता है हमारा
0: जी। अच्छा, जो मतलब यहाँ आप लोग किस धर्म या किस देवता को मानते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: देवता है हमारा बसंदा लाचेन, यहाँ पर दर्ची का जो देवी बसंदा लाचेन बोलता है, और मसाप हम बुद्धिस्ट में मानता है,
0: बुद्धिस्ट
1: जी जी बुद्धिस्ट मानता है। पहले तो कोई बुद्धिस्ट और मुसलमान का कोई नहीं था, बाद में हम वही देवी देवता को मानते बैठते थे, बाद में होते होते हम इधर बुद्धिस्ट में हो गया।
0: पहले अलग देवता को मानते थे, धीरे धीरे उस देवता को अभी भी मानते हैं, लेकिन साथ साथ बौद्ध धर्म को भी मानते हैं,
1: क्यों मानते हैं? हाँ, देवता को भी मानते हैं, देवता नहीं छोड़ते।
0: यहाँ देखते हैं आपका जो गांव है, पहाड़ के गोद में बसा खूबसूरत गांव है, पूरी हरियाली है, चारों तरफ से पहाड़ है, नदी झरना ये सब बह रहा है,
1: नदी, नदी
0: तो आप लोग एक अलग संस्कृति में जीते हैं। युवाओं को आपके जो प्राचीन संस्कृति है उससे लगाव है या भटक रहे हैं या क्या, उनकी क्या सोच है?
1: नहीं, हम तो वही, अगर हमारा ये अलग हो गया तो बिल्कुल हमारा कल्चर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन हमको चाहता है कि हमारा कल्चर रखने की कोशिश करता है, अभी भी हम इतना कोशिश करता हूँ ये कल्चर रखने का, अगर हम यहाँ से करगिल शादी किया तो हमारा कल्चर खत्म होते जाएगा, ले वाले के साथ किया फिर खत्म होते जाएगा, अभी हमारा कल्चर वही तीनों गाँव में चलता है।
0: युवाओं में जो युवक है, नौजवान है, वो अभी तक अपने कल्चर में
1: अपने कल्चर उसी में रखते हैं,
0: रखते हैं,
1: अगर आगे पीछे किया तो ये खत्म होते जाएगा, अगर ले वाले के साथ किया तो ले का कल्चर मानना पड़ेगा, हमारा खत्म हो जाएगा।
0: तो एजुकेशन लेने के लिए बाहर भेजते हैं कि नहीं?
1: नहीं भेजते हैं जी, एजुकेशन के लिए दिल्ली जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, पुणे में भी जाते हैं, लेह लद्दाख में जाते हैं, करगिल में जाते हैं।
0: आपके समाज में यह अनुमति है कि आपके बच्चे बाहर दूसरे में शादी कर सके, ऐसा कुछ है?
1: नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता है जी,
0: ऐसा अनुमति हाँ, नहीं
1: है। अगर हम कुछ है वो नहीं हो सकता है, अगर नहीं मानेगा तो हम क्या करेगा,
0: अलग बात है। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके समाज में ही शादी करें?
1: शादी हाँ, कोई पढ़ा लिखा, मेरा बच्चा पढ़ा लिखा हो गया तो आगे दाद ये गरकुन हनु से कोई पढ़ा लिखा लड़की ला सकता है, आगे से नहीं होता है, हमें उधर नहीं होता है।
0: आप लोग कोशिश करते हैं कि समाज में ही लोग शादी करें। अच्छा, यहाँ रोजगार का साधन क्या है?
1: रोजगार भी है, पढ़ा लिखा हो तो कोई नौकरी मिलता है, अभी तो नौकरी भी बिल्कुल कम मिल गया, मोदी जी ने नौकरी बिल्कुल कम किया, 8-9 साल हो गया, कोई बच्चे बेकार हो गया, पढ़ लिख के क्या करेगा।
0: नौकरी में आपके गाँव में है लोग?
1: हाँ जी,
0: सरकारी नौकरी में
1: है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर भी है, ऐसे है हमारे गाँव में जी सर।
0: और मतलब खेती बाड़ी में क्या क्या?
1: खेती बाड़ी में वही खेती करते हैं, खुबानी बनाता है, हम खुबानी बेच देता है, गिरी बेचता है, गिरी का तेल बेचता है, इतना ही बेचता है जी।
0: अच्छा, बहुत लोग जो जब आर्यन वैली के बारे में प्लेन क्षेत्रों में पता चला

0: बहुत लोग यहाँ घूमने आते हैं, टूरिस्ट बन के आते हैं, इससे आपको फायदा है या नुकसान है, किस तरह से देखते हैं?
1: क्या बोलता है साहब, बहुत फायदा होता है। कोई आके टूरिज्म आता है तो टूरिज्म वाले कुछ पैसा दे के जाता है, यहाँ पर डांस करता है, डांस करके कुछ पैसा देता है, घरों में बैठ के पैसा मिलता है, बहुत फायदा होता है।
0: और मतलब यहाँ आते हैं लोग, रहते हैं तो खर्च करते हैं तो आमदनी बढ़ती है
1: जी।
0: आपके जो यहाँ की सभ्यता है, संस्कृति, उसको कोई किसी प्रकार का तो नुकसान नहीं हो रहा
1: है? नुकसान कोई नहीं है सर, हमको फायदा है। यहाँ पर होम स्टे है, इधर भी होम स्टे है।
0: ओहो, यहाँ मतलब रहने के लिए है, गेस्ट हाउस बना रखे आप लोग यहाँ रहते हैं?
1: नीचे में गेस्ट हाउस है दो तीन जगह में, तो बहुत फायदा है सर, क्यों नहीं है, हमको फायदा है, मेहमान आने से तो फायदा
0: है। तो आप जो
1: नहीं आएगा तो कोई पहचान भी नहीं होएगा
0: जी जी। तो प्लेन में जो लोग हैं, जो टूरिस्ट बनकर आते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग यहाँ आए और देखे आपके सभ्यता?
1: जी हाँ, वो आएगा तो हम उनको सेवा करना पड़ता है, चाय बनाता है, खाना खिलाता है, डांस करता है, कोई किसी कोई कोई आके इधर डांस करने का शौक होता है, उनको बुला के डांस करता है, वो थोड़ा बहुत पैसा दे के जाते हैं जी। ऐसे बहुत फायदा है सर जी।
0: अभी अभी कारगिल से अलग होकर आपका शाम जिला बना है, इसको किस तरह से देखते हैं, इससे आपको क्या फायदा होने जा रहा है?
1: फायदा तो कैसे है, वो तो कारगिल हो रही है, हमको पहले तो दिल से फायदा था, तो अभी तो अलग किया तो पता नहीं कैसे हो जाएगा, अभी तक तो कोई
0: चला नहीं है। यहाँ से
1: नजदीक है, बराबरी है, नजदीक भी इतना नजदीक नहीं है, लेकिन ये टप छोड़ जाएगा, ये हम्बुतिला छोड़ जाएगा, बाकी बराबर है खलसे और कारगिल में। हम पहले से करगिल में था तो चाहता है, करगिल चाहता हूँ, नजदीक भी हो या दूर भी हो, पहचान भी अपना करगिल वाले के साथ हो गया तो। हाँ जी,
0: सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं?
1: सरकार ने दिया तो क्या करूँ, हम अलग ये शाम डिस्ट्रिक्ट में लगा दिया, अब देखेंगे क्या हो रहा है, अगर ज्यादा अच्छा हो जाएगा या खराबी हो जाएगा कोई पता, अभी तो चला नहीं इतना।
0: आर्यन वैली के बारे में क्या नाम है, प्लेन क्षेत्रों में प्रसिद्धि फैल रही है, तो इसको कैसा आप सोचते हैं, और लोग जानना चाहते हैं, इसलिए लोग यहाँ आते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है?
1: बहुत अच्छा होता है सर, आगे से आता है, हम भी जाते हैं दिल्ली वगैरह घूमने के लिए जाता है, उधर से लोग इधर आके हमसे पूछता है ऐसी आर्यन के बारे में, उनको भी बता देता है, डांस करते है इधर ही आते है डांस करने के लिए, ग्राउंड में ये हमारा डांस करने का ग्राउंड है, इधर आके डांस भी करते हैं, बहुत लोग को बाहर से आया तो बहुत फायदा है सर, लेकिन क्या करेगा, ये रोड इधर आना था, अभी तक कोई पता नहीं चला, इधर रोड आ गया तो बहुत अच्छा है, सबसे भी अच्छा है।
0: अच्छा, आपके जो भाषा है उसमें किताबें उपलब्ध है?
1: अभी किताबें नहीं है सर, अभी बना रहा है थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा वाले, पहले तो नहीं था, हम बिल्कुल कमी था, कौन बनाएगा हमको, अभी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, वो थोड़ा बहुत बना रहा है, हमारे बारे में किताब भी बना रहा है।
0: जरूरी है कि मतलब भाषा को संरक्षित रखना जरूरी है
1: जी।
0: क्या अच्छा, आप जो पूजा पाठ करते हैं किस भाषा में करते हैं, मंत्र का उच्चारण सब किस भाषा में करते हैं?
1: अपने भाषा में करते हैं, डोकपा भाषा में करते हैं हम। हाँ जी, डोकपा भाषा होता है हमारा, उसी में हम बता जी सर, पूजा करेगा तो भी वही देवी देवता को भी वही मानते हैं हम।
0: अच्छा, हम कहते हैं मेरा भारत महान है, आप डुकवा भाषा में शब्द को बोलिए तो।
1: हाँ जी,
0: मेरा भारत महान, इसको अपनी भाषा में बोलिए।
1: कुंजो सुम्बो छे ना अशोक भारत तुरे जोठालो था चेरे चितपुर गमो था चेरे बख्शीश ला सुमजा टुकचू लू सुमजा टुकचू छे, बस इसी तरह मानते हैं।
0: मतलब क्या हुआ हिंदी में?
1: हमारे अच्छे हमारे हिंदुस्तान में अच्छा हो जाए।
0: रेडियो कारगिल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आर्यन वैली में हैं। आर्यन वैली लद्दाख क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण और खास इलाका है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह शुद्ध आर्यन है। आर्यन वैली में बहुत सारे गांव आते हैं। आज हम डार्चिक गांव में हैं। डार्चिक गांव में हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ?
1: मेरा नाम तहसीर उद्दीन है जी।
0: तहसीर
1: जी, तहसीर उद्दीन
0: जी,
1: मैं दार्ची गांव का हूँ सर
0: जी। अच्छा, यहाँ के लोग मतलब अपने आप को आर्य वंशज मानते हैं, इसके बारे में थोड़ा हमारे हमको बताएं।
1: हम आए हैं गिलगित से सर, पहले हमारा दादा लोग आए हैं गिलगित से। गिलगित से आके हम उधर दानाला में बसे हुए थे पहले, उसके बाद दानाला

0: में बैठकर फिर दा से नीचे आके उन्होंने दा गांव में थोड़ा उधर पत्थर ही पत्थर था तो कोई गांव नहीं थे, तो उन्होंने इधर अगर उधर कुछ गांव होने वाला है तो ये तीर से हमको नदी नाली निकल जाए, तभी तीर लगाया तो उधर से दा गांव में नाली निकल गया, फिर उधर दा गांव में फंस गया, फिर उधर से एक आया गप्पो मारो गरकुन में ठहरा, गरकुन गांव में आबाद किया उसने। फिर उनका बहन था हुरबी, उनका बहन हुरबी था, वो आके दर्चिक में बस गया, फिर तीनों इसी तरह बैठा, फिर इधर खाते पीते आगे पीछे जाते इधर आते ही बैठ गया।
1: तो आप लोग यहाँ बहुत लंबे समय से रह रहे हैं?
0: जी जी जी।
1: आपके दादा परदादा यहाँ आए थे?
0: हाँ हाँ, हमारे दादा गए कि होगा कुछ 2000 साल होगा।
1: 2000 साल?
0: जी सर, जी सर, इतना ही साल पहले तो हम आ चुका है, बाद में लद्दाख वाले और ये करगिल वाले तो बाद में बस गया, पहले शुरू में हम आके बैठा इधर। जी, जी।
1: ऐसा माना जाता है कि
0: हमारे यहाँ हनु दा गरकुन दर्चिक था, ये चुली चांद भी था, चुली गांव भी, चुली गांव बाद में इस्लाम में गया तो उनका खत्म हो गया आर्यन, वो तो इस्लाम में गया, उनको तो कोई डांस शांस करने का तो मसाब में है नहीं, तभी था तो ये चुली गांव भी हमारा था, फिर पाकिस्तान में है उधर गनों में, फिर हमारा भाषा उधर भी मिलता है, वो पाकिस्तान चला गया इस्लाम में गया, तो इस्लाम में गया तो अभी उन्होंने ख़त्म किया कल्चर, अभी हम चार गांव का कल्चर ही है। हमारा फंक्शन चलता है जनवरी में, हमारा लोसार आता है और लोसार के बाद आता है और इधर जून, जून में हमारा इधर मोला बोलते फिर फंक्शन आता है, अक्टूबर में फिर फंक्शन बड़ा आता है मंठना कहते हैं, हमारा इधर दर्चिक गांव में मंठना कहता है और ये गरकुन दर्चिक में बोनोना कहता है, छपो शुबला ऐसे बताता है जी।
1: अच्छा, आर्यर वैली में जो चार गांव आते हैं उनका नाम बताइए।
0: एक तो हनु गांव है सर, एक गरकुन, एक दर्चिक। जी,
1: आज हम दर्चिक गांव में
0: जी।
1: और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की जो सभ्यता है, संस्कृति है, भाषा है, वेशभूषा है, पहनावा है, सब अलग है, तो हमको बताइए कि मेरे क्या अलग है?
0: अलग होता है सर, इधर हमारा जो दा गरकुन दर्चिक तीनों का भाषा एक ही है, हनु का थोड़ा अलग होता है।
1: कौन सी भाषा है?
0: हमारा ब्रोकपा भाषा, ब्रोकपा आर्यानी ब्रोकपा भाषा होता है हमारा भाषा, और कहीं भी नहीं होता है, सिर्फ हम तीन गांव में होता है हमारा भाषा, किसी को भी समझता नहीं है, दूसरों का भाषा हमको समझता है, पूरा उर्दू भी समझता है, लद्दाखी भाषा हमको समझता है, करगिल का भाषा हमको समझता है,
1: लेकिन आपकी भाषा कोई
0: नहीं, कश्मीरी भी हमको समझता है, हिंदी भी हमको समझता है, लेकिन हमारा भाषा किसी को समझेगा नहीं, हमारा भाषा मुश्किल है समझाने,
1: मुश्किल से।
0: जी सर।
1: अच्छा, यहाँ के जो आर्य लोग हैं, आर्यर वैली के जो लोग हैं, वो फूलों से बहुत प्यार करते हैं, वो फूल का क्या महत्व है?
0: वही तो हमारा फूल है, हम देवी देवता को मानते हैं ज्यादातर, देवी देवता को मानकर हम सिर में फूल लगा के देवी को मानते हैं। पहले जमाने में हम अंडा नहीं खाते थे, मुर्गे नहीं खाते थे और गाय का दूध नहीं पीते थे, अभी तो अब बकरियां खत्म हो गया तो थोड़ा बहुत चलाता है, नहीं तो ये बड़ा हिया का गोश्त वोश बिल्कुल नहीं चलाते हमारे इस गांव में, तीनों गांव में।
1: अच्छा, शादी ब्याह आप लोग कैसे करते हैं?
0: जैसे शादी वही तीनों गांव में करता है,
1: उसी तीनों गांव
0: दा गरकुन दर्चिक,
1: दर्चिक
0: में। हाँ, उसी में शादी करता है। हाँ। आगे पीछे और लेस भी नहीं होता है, करगिल से भी नहीं होता है।
1: शादी ब्याह जैसे भारत में आम वर्गों में होता है उसी तरह करते हैं, अलग ढंग से शादी ब्याह?
0: शादी तो अलग ढंग से होता है, डांस करता है ज्यादातर, हम डांस करता है, खुबानी का तेल खिलाता है खूब, हाँ, अपना सातू के साथ पप्पा बना के खुबानी का तेल खिलाता है। जी, ऐसे में शादी होता है हमारा,
1: शादी होती है
0: जी।
1: अच्छा, जो मतलब यहाँ आप लोग किस धर्म या किस देवता को मानते हैं, इसके बारे थोड़ा बताएं।
0: देवता है हमारा बसंदा लाचन, यहाँ पर दर्ची का जो देवी बसंदा लाचन बोलता है, और मसाप हम बुद्धिस्ट में मानता है,
1: बुद्धिस्ट?
0: जी जी, बुद्धिस्ट मानता है, पहले तो कोई बुद्धिस्ट और मुसलमान का कोई नहीं था, बाद में हम वही देवी देवता को मानते बैठते थे, बाद में होते होते हम इधर बुद्धिस्ट में हो गया,
1: पहले अलग देवता को मानते थे, धीरे उस देवता को अभी भी मानते हैं, लेकिन साथ साथ बौद्ध धर्म को भी मानते हैं, क्यों मानते हैं?
0: हाँ, देवता को भी मानते हैं, देवता नहीं छोड़ते।
1: यहाँ देखते हैं आपका जो गाँव है, पहाड़ के गोद में बसा खूबसूरत गांव है, पूरी हरियाली है, चारों तरफ से पहाड़ है, नदी झरना ये सब बह रहा है, तो आप लोग एक अलग संस्कृति में जीते हैं। युवाओं को आपके जो प्राचीन संस्कृति है उससे लगाव है या भटक रहे हैं या क्या उनकी क्या सोच है?
0: नहीं, हम तो वही, अगर हमारा ये अलग हो गया तो बिल्कुल हमारा कल्चर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन हमको चाहता है कि हमारा कल्चर रखने की कोशिश करता है। अभी भी हम इतना कोशिश करता हूँ ये कल्चर रखने का। अगर हम यहाँ से करगिल शादी किया तो हमारा कल्चर खत्म होते जाएगा, ले वाले के साथ किया फिर खत्म होते जाएगा। अभी हमारा कल्चर वही तीनों गाँव में चलता है।
1: युवाओं में जो युवक है, नौजवान है, वो अभी तक अपने कल्चर में
0: अपने कल्चर उसी में रखते हैं,
1: रखते हैं।
0: अगर आगे पीछे किया तो ये खत्म होते जाएगा। अगर ले वाले के साथ किया तो ले का कल्चर मानना पड़ेगा, हमारा खत्म हो जाएगा।
1: तो एजुकेशन लेने के लिए बाहर भेजते हैं कि नहीं?
0: नहीं भेजते हैं जी, एजुकेशन के लिए दिल्ली जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, पूना में भी जाते हैं, ले लद्दाख में जाते हैं, करगिल में जाते हैं।
1: आपके समाज में यह अनुमति है कि आपके बच्चे बाहर दूसरे में शादी कर सके, ऐसा कुछ है?
0: नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता है जी,
1: ऐसा अनुमति हाँ, नहीं
0: है। अगर हम कुछ है वो नहीं हो सकता है, अगर नहीं मानेगा तो हम क्या करेगा,
1: अलग बात है।
2: ni fail program entesna benjutne programa sipnse prochukan penmin amarnat prasad medium ekade avakashwani kargilen